0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
3: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by the world famous qari Mishari Rashid Ali Farsi from Kuwait.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajeem.

0: This is Inspire FM with you 24 hours a day. Inspire.
1: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से रब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
2: I have

0: اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں،
1: یعنی اخلاقی حصے سے بھی ہم میں اچھے اور برے دونوں طرح کے جن پائے جاتے ہیں، اور اعتقادات میں بھی ہمارا کوئی ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ہم مختلف گروہوں میں منقسم ہیں۔ یہ بات کہہ کر یہ ایمان لانے والے جن اپنی قوم کے جنوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم راہ راست معلوم کرنے کے یقیناً محتاج ہیں، اس سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: انسپائر ایف ایم براڈ کاسٹنگ ٹو دی ہارٹ آف لوٹن آن 105.1 ایف ایم اینڈ آل اکراس دی ورلڈ آن www.inspireFM.org۔ انسپائر ایف ایم۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوارکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather he looks towards your heart and your actions۔
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
8: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
9: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk to donate.
10: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
11: But
10: it costs £10 per inch.
11: And that's too expensive.
10: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
11: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
12: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
14: Assalamu alaikum, a very warm welcome to everyone. आप सुन रहे हैं इंस्पायर एफएम 105.1 पर फैमिली मैटर्स शो। मैं हूं आपकी होस्ट अफशा इरफान और मेरे साथ है हाजरा खान।
15: वी आर सो हैप्पी यू हैव ज्वाइंड अस वंस अगेन। Whether you are listening from your kitchen while making chai, driving to your work or any household chores, or simply relaxing, welcome, khush aamadeed, ji aayanu, bhali kare aaye, pakhair rahle, ahlan wa sahlan. और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पहली काविश को अप्रिशिएट करने का और उसको उसका दिल से स्वागत करने का। यू कैन डेफिनेटली कॉल अस और सेंड अस अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन आवर हॉटलाइन दैट इज 07779481822 या यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 01582481822। Follow our Insta handle, which is Inspire FM Luton, or log on to our website, inspirefm.org, where you can listen to our live and previously recorded shows and enjoy much more.
14: बिल्कुल सही, और हमें बहुत खुशी है कि एक दफा फिर हम आपके सामने Inspire FM का एक नया प्रोग्राम, एक नई चीज लेकर आए हैं। अच्छा हाजरा, पिछली दफा हम लोग बात कर रहे थे फैमिली मैटर्स शो पे, ठीक है, क्या आप थोड़ा सा हमें इसका दोबारा से रिकैप दे सकती हैं?
15: श्योर, व्हाई नॉट। लास्ट वीक वी टॉक्ड अबाउट समथिंग रियली ब्यूटीफुल। वी डिस्कवर्ड दैट फैमिली इजंट डिफाइंड बाय वन शेप। सम फैमिलीज आर लार्ज, सम फैमिलीज आर स्मॉल, सम आर लाउड, सम आर क्वाइट, सम आर बिल्ट बाय ब्लड, अदर फैमिलीज आर चोजन, एंड एवरी सिंगल वन डिजर्व्स लव, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट।
14: बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल कहा सब कुछ। फैमिली होती ही एक प्यार, मोहब्बत, एक बॉन्ड वाली चीज, एक बॉन्ड वाली जगह जहां पे आप अपनी हर चीज बयान कर सकते हैं, हर बात कर सकते हैं, हर मशवरा कर सकते हैं, हर किस्म की एडवाइस भी ले सकते हैं। और इसमें हमने डिस्कशन की थी, कुछ फैमिलीज को हमने डिस्कस किया था।
15: एग्जैक्टली,
14: कुछ टाइप्स ऑफ फैमिलीज डिस्कस की थी, जिसमें एक न्यूक्लियर फैमिली थी, एक सिंपल फैमिली थी, एक सिंगल फैमिली थी, एक मुख्तलिफ फैमिलीज थी। आज हम जिस चीज पर बात करेंगे वो इन तमाम फैमिलीज को बॉन्ड पे काउंट करती है, यानी वो चीज जो इन सब तमाम की तमाम फैमिलीज को इकट्ठा रखती है। और वो क्या चीज है हाजरा?
15: वो है कम्युनिकेशन, हमारा आज का टॉपिक। एंड बिफोर वी प्रोसीड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो वन थिंग, दैट दिस टॉपिक कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी कवर्ड इन टू पार्ट्स। दिस इज पार्ट वन, एंड नेक्स्ट वीक यू आर गोइंग टू लिसन टू पार्ट टू ऑफ कम्युनिकेशन एपिसोड। द रीजन इज दैट कम्युनिकेशन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, एंड इट इज समथिंग दैट होल्ड्स एवरी फैमिली मेंबर टुगेदर। जस्ट इमेजिन a house which has roofs, which has walls, but no windows. No windows or no doors. How are you going to enter inside the house, or how are you going to look outside the house? It is the windows and the doors that is the communication within the family that makes you communicate with each one of the family members and take care of them.
14: बिल्कुल सही कहा। किसी भी फैमिली का, किसी भी खानदान का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है वो कम्युनिकेशन होता है। जब तक हम बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, हम एक दूसरे को बताएंगे नहीं, तो हम दूसरे से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी बात को समझेगा?
15: एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन, इस पे मुझे एक बहुत फनी लाइन याद आ गई कि कम्युनिकेशन इज जस्ट लाइक टूथपेस्ट, वंस इट्स स्क्वीज्ड आउट यू कांट पुट इट बैक। आपके मुंह से निकले हुए कोई भी ऐसे अल्फाज जो कि किसी को दुख पहुंचा दें, किसी को तकलीफ पहुंचा दें, यू कांट टेक देम बैक। तो जनरली कभी भी बात करते हुए आप उसको दो दफा, तीन दफा जरूर सोचें, एंड स्पेशली विद योर लव्ड वंस, विद योर फैमिली मेंबर्स, विद योर एक्सटेंडेड फैमिली, विद योर एल्डर्स, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक।
14: तो इसका मतलब हुआ कि जैसे आजकल या बहुत सारी फैमिलीज में लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन होती है, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, लोग इसको झगड़ा भी कहते हैं, लोग इसको गपशप भी कहते हैं, बातचीत भी कहते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी बाउंड्रीज होनी चाहिए, रिस्पेक्ट की बाउंड्री होनी चाहिए। हमारी बड़ों के लिए एक अलग होना है, रिस्पेक्ट होता है, जबकि बच्चों के लिए प्यार मोहब्बत होती है। यानी कम्युनिकेशन में भी ये सारी चीजें ऐड होती हैं।
15: बिल्कुल, आप जब आप अपने किसी एल्डर से बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर एल्डर, यू हैव टू मेंटेन द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेशन में बी वेरी फ्रैंक, वेरी इजी गोइंग, बट द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट शुड बी देयर ऑल द टाइम्स.
14: बिल्कुल, और हर हर किसी से कम्युनिकेशन करने की लेवल्स भी अलग होते हैं. दोस्तों के साथ हम गपशप भी लगाते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते हैं, हमारी नोक झोंक भी चलती रहती है थोड़ी सी. लेकिन जब हम अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, या किसी मेहमान के साथ करते हैं, तो हमारा एक रिस्पेक्ट का उसमें रहता है, एस्पेक्ट रहता है,
15: एलिमेंट आ जाता है.
14: बिल्कुल सही कहा. और जब हम बच्चों से करते हैं तो फिर हमें वो कम्युनिकेशन एक प्यार, मोहब्बत और समझाने वाली उस पे चली जाती है. आप उनको गाइडेंस वाली कम्युनिकेशन उसे कर सकते हैं. लेकिन इन सब चीजों के दरमियान देखा जाए तो मेन थिंग इज कम्युनिकेशन, मेन एस्पेक्ट इज कम्युनिकेशन.
15: एग्जैक्टली, एज आई सेड अर्लियर दैट कम्युनिकेशन इज द विंडोज एंड इट इज द डोर्स विद इन योर फैमिली, जिसके साथ आप किसी के भी दिल में, किसी के भी इमोशंस में आप झांक सकते हैं, आप उतर सकते हैं. बिकॉज यू केयर फॉर देम, आप उनका ख्याल रखते हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, और आप ये आप जानना चाहते हैं कि उनके इस वक्त के इमोशंस क्या हैं, ताकि उनको दुख और तकलीफ ना पहुंचे. इफ दे आर गोइंग थ्रू सर्टन टाइम, इफ दे आर गोइंग थ्रू एनी हार्डशिप, यू वॉन्ट टू बी देयर सपोर्ट. और ये उसी तरह उसी वक्त मुमकिन है जब आप कम्युनिकेशन के सारे दरवाजे और खिड़कियां ओपन करके रखेंगे अपने लव्ड वंस के साथ.
14: अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है, अब किसी भी फैमिली में, किसी भी घर में कम्युनिकेशन का जो एक होता है, जारी बात है, हर कोई सुबह फारिग होता है, कोई शाम को फारिग होता है, कोई किस वक्त आता है, कोई स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, काम, तो आपका क्या ख्याल है कम्युनिकेशन का बेस्ट टाइम कहाँ होता है?
15: देखिए, व्हेन यू बिल्ड द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन इन योर फैमिली, जब आप उसको फाउंडेशन से ही एक बिल्डिंग अच्छी बनाएंगे, तो आपको फिर टाइम नहीं देखना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट दिस टाइम और वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट ऑन दैट टाइम. वो फिर आपकी ओवरऑल एक बॉन्डिंग, एक कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होगा कि वेन एवर यू आर गोइंग टू गो टू समबडी के आई नीड यू राइट नाउ, तो वो दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यू एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देम इफ दे से कि अच्छा अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेट्स टॉक आफ्टर 5 मिनट्स और लाइक एन आवर और सो, तो बोथ पार्टीज आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर.
14: तो आपके ख्याल में क्या है जब आप ये कम्युनिकेशन करती है, लेकिन जिस तरह अगर बहुत बिजी है तो आप क्या समझती है एक घर का जो डाइनिंग टेबल होता है वो कम्युनिकेशन के लिए कैसा स्पॉट है?
15: बेस्ट, क्योंकि दैट इज इफ यू आर हैविंग अ मील, दैट इज इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप एक डे का मील जो है वो साथ में ले रहे हैं तो दैट इज योर डाइनिंग टेबल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एट दैट पार्ट ऑफ द डे, कि आप सब मिलके बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यू आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर फ्रेंकली.
14: तो यानी कि जो डाइनिंग टेबल है वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है ना? अगर टेबल डाइनिंग टेबल गोल है तो हम उस पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अगर वो रेक्टेंगल है तो हम उसके ऊपर जो है तो क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल मेज कॉन्फ्रेंस विद डिनर के साथ, विद लंच के साथ. और मेरे ख्याल में लंच और डिनर का जो टाइम होता है वो जब सारे बैठे होते हैं तो उसमें आप कम्युनिकेशन जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो बहुत आप कह लें स्ट्रांग होती है, क्योंकि सारी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है.
15: और दैट इज वन टाइम, स्पेशली डिनर के बाद, इट इज अ टाइम व्हेन एवरीवन इज रिटायरिंग फ्रॉम देयर डे रूटीन, और उसके बाद दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक टास्क टू डू अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग और रीडिंग अ बुक और डूइंग सम हॉबी और समथिंग लाइक दैट. तो वो एक ऐसा चिल टाइम होता है कि आप you don't have anything on your mind ke maine bhi iske baad ye karna hai ya I have these things lined up for my rest of the day, so you sit with a free mind and you talk, you reflect on the events throughout the day, and you ask your children or your spouse or your parents what happened during the day, what made you laugh, what made you sad, what made you think from a different perspective and things like that.
14: बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लंच या डिनर का टाइम होता है उस पर अक्सर हम लोग भी अपने घरों में जब सारे दिन के बाद सारे काम अंजाम देने के बाद बैठते हैं तो बच्चों से पहला सवाल मेरा यही होता है आमतौर पर कि हाउ वॉज योर डे। नाउ ये कहने का बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ वॉज योर डे, बट इट कवर्स एवरीथिंग
15: एंड इट लीव्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द पर्सन यू आर आस्किंग फ्रॉम।
14: बिल्कुल, बच्चों से पूछते हैं कि हाउ वॉज योर डे तो दे फील नोटेड, दे आर जस्ट नॉट एग्जिस्टिंग, दे आर बींग हर्ड, दे आर बींग नोटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें फिर ये होता है कि दे नो दैट दिस इज द टाइम जहां पे हम अपने प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं, हम अपनी खुशी भी शेयर कर सकते हैं, हम अपने जो है कोई भी ऐसी चीज है जो कि जिसके लिए हमें गाइडेंस चाहिए तो हम शेयर कर सकते हैं। एंड दैट इज द मेन क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑफ द होल डे, के जो आप आस्क करते हो अपने बच्चों से कि हाउ वाज योर डे, या एज अ वाइफ यू आस्क योर हस्बैंड ओके डियर हाउ वाज योर डे।
15: एग्जैक्टली, बिकॉज इफ यू आर हैविंग अ बिजी डे, इफ यू आर हैविंग अ मे बी अ रफ डे, तो योर स्पाउस इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, दे आर अर्निंग लाइवलीहुड, दे आर having their own tough routine, they are answerable to their line managers, bosses, they have this aspect of providing livelihood to their family the whole time on their mind, so they come back home with a cognitive burden ke abhi ye cheeze bhi karni hai, next few days mein ye cheeze karni hai. For example, August is going to end and every parent is going to go to the market to buy new clothes, new uniform, new shoes for the new academic year. So these are the fathers who are making up for these, or in some cases mothers are also responsible for paying for some of the things.
14: बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, वो एक टाइम होता है जिसमें आप कम्युनिकेट भी करते हैं और आपकी लिस्ट भी बनती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हॉलीडे लिस्ट बनती है, ग्रोसरी लिस्ट बनती है, शॉपिंग लिस्ट बनती है। वो जो टाइम होता है, इट्स आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम,
15: मोस्ट प्रोडक्टिव आई वुड से,
14: या डेफिनेटली बहुत प्रोडक्टिव होता है। और बच्चों की तो जो एक लंबी सी लिस्ट होती है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी चाहिए, उस वक्त फिर आप को उनको समझाने का, बताने का, उनके साथ डिस्कस करने का वो बहुत बेहतरीन टाइम होता है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि बच्चा आता है, अभी मुझे ये चाहिए, एट दैट मोमेंट वी आर जस्ट बिजी, हम कहते हैं अच्छा ठीक है देख लेंगे,
15: विल सी इट, या
14: हाँ हम देखेंगे, वो एक छोटा सा जुमला होता है, बट लेकिन हम देखेंगे एक कह देना वो बच्चे को इतना इम्प्रेस नहीं करता, नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जब आप बैठ के वो बच्चा आपसे कहता है मुझे ये चाहिए, फिर आप उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स एंड अच्छा या बुरा या जो भी आप कह ले आप उसको समझाते हैं, तो ही अंडरस्टैंड्स मोर, क्योंकि आप फुल अटेंशन से उसकी बात सुन रहे हैं, फुल अटेंशन से उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो डिनर टाइम है उस पर कम्युनिकेशन इज मोर प्रोडक्टिव देन जनरल।
15: Yeah, and I would say that communication is not just talking, it's listening also. You we all should be
14: presently
15: actively listening to what other family members is saying, what are their emotions, what are their thoughts on something, because while we are discussing something, we are always having something else going on in our mind.
14: We have two thoughts in our mind when we are discussing things. Yeah.
15: So we need to be active listeners, we need to be
14: mentally present over there,
15: exactly, to show them that we are there for them, we are listening to them.
14: Bilkul, kyunki this is the thing that makes a house a home. Yeah,
15: exactly.
14: Jahan pe everybody is can feel that it's he's being or she's being valued.
15: Exactly.
14: Uski jo value hoti hai wo aapki listening se hoti hai, phir aapki communication se hoti hai. Us aajkal ek daur hai gadgets ka, माँ भी फोन पे है, बाप भी फोन पे है, बच्चे भी फोन पे हैं। तो कोशिश किया करें कि जिस वक्त आपका फैमिली टाइम होता है, मील टाइम होता है, उस वक्त आप ये गैजेट्स को साइड पे रखें।
15: नो गैजेट्स अलाउड, this rule should be for everyone.
14: Exactly.
15: Yeah.
14: No gadgets on the dining table.
15: Exactly.
14: It's the communication time. It's your family time. It's your meal time. It's your time. जिसमें आप हर चीज कर सकते हैं। यस इट्स डिफिकल्ट आजकल के टीन एजर्स के हाथ से मोबाइल लेना बिल्कुल एक जंगे आजादी की जंग लड़ना है
15: बट वी हैव टू फाइट दिस यस वी हैव टू फाइट दिस वॉर
14: वॉर एग्जैक्टली इट्स अ वेरी बिग वॉर
15: वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड वी हैव टू मेक देम रियलाइज सर्टेन थिंग्स एंड वी हैव टू यू नो
14: मेक अ रूल
15: एग्जैक्टली मेक अ रूल लेट देम हैव देम फॉलो इट
14: एंड इट डज नॉट हैव टू बी लाइक अ एंग्री थिंग आपको गुस्से में चीख चिल्ला के कहने की जरूरत है मोबाइल रखो Put this thing away. No, you make a rule and you do it yourself. Parents are the role model for their children.
15: और देखिए जब आप उस family time को interesting बना देंगे, interactive बना देंगे,
14: बिल्कुल,
15: तो वो बच्चा खुद ही वापस आ जाएगा.
14: बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है. जब आप बच्चे को value देना शुरू करेंगे, उसकी बात को सुनना शुरू करेंगे, उसको समझना शुरू करेंगे, तो वो इन चीजों को खुद ही छोड़ना शुरू कर देगा. उसको पता होगा कि ये time है जहाँ पे मैं अपनी बात कर सकता हूँ
15: और मेरी मुझे कोई जज भी नहीं करेगा
14: दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट क्योंकि यूजुअली हम लोगों को हम बहुत जजमेंटल हैं बच्चा बात करता है तो हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं अच्छे से ये कहा है तो ये जरूर ऐसा कर रहा होगा
15: दैट इज द रीजन दैट दे आर ऑलवेज गोइंग बैक टू देयर फ्रेंड्स अगेन एंड अगेन बिकॉज देयर फ्रेंड्स आर नॉट जजिंग देम एंड वी आर द वंस हु आर जजिंग देम ऑल द टाइम अपने बच्चों को जज ना करें नॉट ऑल द टाइम Not all the time.
14: बिल्कुल
15: और keep your judgments to yourself, to your partner. आपस में discuss करें कि whatever the thing is going on, don't judge your children on their faces and don't snub them right away. Listen to them.
14: बिल्कुल बाज़ औक़ात बच्चा कहना कुछ चाह रहा होता है लेकिन कम्युनिकेशन के लैक की वजह से हम उसकी चीज को या उसकी बात को हम समझ नहीं सकते हम अपनी एक जजमेंट बना लेते हैं कि अच्छा इसने ये कहा है तो ये जरूर ऐसा कर रहा होगा It's not possible.
15: So assumptions is another void in the whole communication aspect of the family that it creates a void and something negative can easily fill it in.
14: हाँ बिल्कुल वो तो आप किसी भी रिश्ते में देख लो अगर आपने पहले से ही अंदाजे लगाने शुरू कर दिए assumptions कर दिए तो आपका अपना रिश्ता भी खराब होता है अब मैं कहूँ कि हाजरा तुम कल नहीं आई थी तो उसके बाद इसका मतलब है कि तुमने मुझसे झूठ बोला नहीं ये मेरी assumption है maybe you are busy with something. तुमने मुझे कहा कि मैं फोन करूंगी लेकिन तुमने फोन नहीं किया तो मैं अब ये कहूँ कि नहीं भाई इसने फोन नहीं किया ये जरूर कुछ और कर रही है इसे मुझे बताया नहीं
15: तो वी बोथ ऑफ अस आर डूइंग अ मिस्टेक ऑन आवर पार्ट लाइक आई एम लीविंग दैट कम्युनिकेशन वॉइड दैट यू आर फिलिंग इन विद योर अजम्पशन
14: एग्जैक्टली और ये वो चीज है जो कि अच्छी भली फैमिलीज को बर्बाद कर देती है
15: बिल्कुल बिल्कुल करती है नो डाउट
14: नो इसमें क्या होता है अब अगर एक घर है एक है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपकी इतनी ज्यादा अभी फ्रेंकनेस नहीं है कि आप हर एक से सब कुछ पूछे तो जो छोटे छोटे जुमले होते हैं हाउ आर यू हाउ वाज योर डे अच्छा क्या हुआ कैसे हुआ हाउ आर यू फीलिंग यू ओके दीज आर जस्ट स्मॉल वर्ड्स
15: एंड इट्स लाइक अफशान जस्ट सेड दैट कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली टॉकिंग नॉट ओनली लिसनिंग इट इज अपोलोजाइजिंग इट इज फॉर गिविंग चेकिंग इन समटाइम्स आस्किंग हाउ आर यू फीलिंग टूडे टेलिंग दैम दैट यू आर देयर फॉर दैम सो कम्युनिकेशन इज वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट वर्बल कम्युनिकेशन इज टेंजिबल कम्युनिकेशन इज इनटेंजिबल सो लेकिन कैसे अभी आप हमारे साथ रहे हम आपको बताते हैं एंड सेकेंडली एज वी हैव मेंशन्ड इट अर्लियर दैट दिस शो इज फॉर एवरीवन आउट देयर इरेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन योर कास्ट योर द लैंग्वेज यू स्पीक जस्ट मैसेज अस ऑन 07779481822 to let us know how do you feel and how do you communicate in your family
14: बिल्कुल सही है अच्छा अब जब हम कम्युनिकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम न्यूक्लियर फैमिली की भी बात कर रहे हैं कि सब बैठते हैं डिनर टाइम है तो ये जो कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट है ये हर फैमिली को डिफरेंटली इफेक्ट करता है
15: एग्जैक्टली
14: ठीक है अगर एक माँ बाप बच्चे बैठे हैं और वो बातचीत कर रहे हैं तो उसमें एक फैमिली इन्वॉल्व है एक सिंगल पेरेंट है तो आपके क्या ख्याल में ये कम्युनिकेशन का जो फेज है एक सिंगल पेरेंट के लिए ज्यादा टफ होता है या एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए टफ होता है या एक एक्सटेंडेड फैमिली के लिए टफ होता है
15: अफशा आपने मुझसे एक ही वक्त में तीन सवाल पूछ लिए
14: हाँ क्योंकि वही बात आपकी वाली बात कि ये जो एक कम्युनिकेशन का टॉपिक है ये बहुत बड़ा है
15: एग्जैक्टली
14: और ये हर फैमिली को डिफरेंटली अफेक्ट भी करता है.
15: बिल्कुल.
14: एक तरह से ये सबके लिए एक बॉन्ड भी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये सबके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है. आपका क्या ख्याल है?
15: देखिए, कम्युनिकेशन हर फैमिली अपने फैमिली में कैसे कम्युनिकेट करती है विद इन फैमिली मेंबर्स, इट इज डिफरेंट

0: फैमिली टाइम कंसिडर करते हैं, तो इट वेरीज फ्रॉम फैमिली टू फैमिली.
1: बिल्कुल सही कहा, हर फैमिली का एक अपना सेटअप होता है जो वो बनाती है जब वो कम्युनिकेशन करती है. तो इसी कम्युनिकेशन के चक्कर में कभी कम्युनिकेशन हो जाती है, कभी झगड़ा हो जाता है.
2: बिल्कुल. लेकिन एक अगर आप की को ले लें, एक द की ऑफ द कम्युनिकेशन आई वुड से, कि जैसे हमने कहा कि ये प्रोग्राम सबके लिए है, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप किसी भी फेथ से ताल्लुक रखते हैं. आई वुड quote the sunnah of our Prophet Muhammad, peace be upon him, ke he would listen before speaking, he smiled often, and he never humiliated people publicly. He corrected with kindness. So there is so much we can learn from his sunnah, ke mashallah se itni achhi cheeze hame bata di gayi hain ki if we just follow it, to hamara ghar ka ek environment hi different ho jayega.
1: Bilkul. और उसमें आता है प्यार, मोहब्बत, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग. इट्स आल्सो कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम पार्ट है लिसनिंग. जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे क्या, और समझेंगे भी कैसे समझेंगे. आप सिर्फ वो तो नहीं कर सकते ना कि अगला मुंह पकड़ के बैठे रहे, अगला बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, देयर इज नो रिप्लाई, नो एक्सप्रेशंस, नथिंग. तो ये तो कम्युनिकेशन ना हुई.
0: Exactly.
1: क्योंकि अगला बंदा आपसे रिस्पॉन्स मांगता है उसका. और कभी कभी एक हाजरा एक बड़ी डिफरेंट चीज होती है. समटाइम्स बींग देयर, बींग लिसनिंग एंड जस्ट सेइंग वन वर्ड, everything's going to be okay.
0: It makes a huge difference.
1: बहुत बड़ी difference हो जाती है. बाज़ औक़ात आपको सिर्फ एक जुमले की जरूरत होती है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा.
2: बिल्कुल. क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो एज वेल. ठीक है, आप किस मसले पे बात कर रहे हैं, आप किस माहौल में बात कर रहे हैं. आर यू सिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, इफ यू आर टॉकिंग विद योर फैमिली मेंबर, इफ यू आर सिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, योर वॉइस शुड बी रीजनेबली लो एंड यू शुडंट बी यू नो लाउड इनफ टू कैच एवरीवन्स अटेंशन. और आपको ये भी देखना है कि अगला किस टॉपिक पे बात कर रहा है. यू डोंट हैव टू डिविएट, क्योंकि इफ समबडी इज शेयरिंग देयर प्रॉब्लम विद यू, डोंट डिस्ट्रैक्ट देम और डिविएट फ्रॉम देयर, अदरवाइज दे आर गोइंग टू थिंक दैट इट्स माय प्रॉब्लम इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ इन देयर आईज.
1: हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं. जब भी कोई भी बात करे, आप उसको पूरी तवज्जो से सुने, उसको समझें, उसको उसके मुताबिक रिप्लाई करें. और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए आपको एग्रेसिव होना पड़े,
0: नॉट एट ऑल,
1: आर्ग्यूमेंट्स करने पड़े. आप बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश
2: कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. जब भी हम बात करें, वी शुडंट बी डिस्ग्रेसिंग एनीवन, वी शुडंट बी टॉकिंग इन अ वेरी हार्श टोन, क्योंकि हमारी लैंग्वेज की टोन ही अगले को सैड करने के लिए या उसको
1: जज करने के लिए, उसके लिए उसको इंसल्ट करने के लिए काफी होती
0: है.
1: बेसिकली देयर इज अ वेरी वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, आर्ग्यूमेंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये सारी चीजें हैंड टू हैंड चलती है. तो देयर इज अ वेरी वेरी थिन लाइन. अक्सर पेरेंट्स बड़े खुश होके कहते हैं कि जी हमारा बच्चा बड़ा हाजिर जवाब है. वो ये भूल जाते हैं कि वो जो हाजिर जवाब बच्चा है वो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के दरमियान जो एक थिन लाइन है वो क्रॉस कर चुका है. हाजिर जवाब होना इज अ गुड थिंग, लेकिन हाजिर जवाब होने के साथ साथ बीइंग अवेयर ऑफ द रिस्पेक्ट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट.
2: तो अफशान देखें, वही बात वापस हमारी पहली एपिसोड पे चली जाती है जब हमने ये चीज डिस्कस की थी दैट फैमिलीज आर द फर्स्ट स्कूल्स दैट द चाइल्ड गोज टू.
1: बिल्कुल.
2: तो द पेरेंट्स हाउ दे कम्युनिकेट टू ईच अदर, हाउ द पेरेंट्स आर कम्युनिकेटिंग टू देयर पेरेंट्स, द चाइल्ड इज अब्सॉर्बिंग एवरी इंच ऑफ दैट.
1: बिल्कुल.
2: सेकेंड ऑफ दैट.
1: और दूसरी बात ये कि ये आपस में हस्बैंड एंड वाइफ का भी एक बिहेवियर होता है. अगर वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो बच्चे नेचुरली वो रिस्पेक्ट देखकर सीखकर बड़े होते हैं. जिन आप खुद अंदाजा लगा ले, जिन घरों में एनवायरनमेंट बहुत सॉफ्ट होती है, सबकी लैंग्वेज सबकी टोन सॉफ्ट होती है, एक रिस्पेक्ट का एरिया होता है, वहां के बच्चे नेचुरली बड़े नोबल, बड़े हम्बल, बड़े रिस्पेक्टफुल बड़े होते हैं. और जब वो थोड़े थोड़े उस

0: शुरू में आते हैं तो शेल शॉक्ड हो जाते हैं, उसका रीज़न है। अब उनको क्योंकि वो हफ्ते से उनके साथ वो एक्टिंग कर रही थी लेडीज़, तो उनको वो प्रैक्टिस उनकी होगी तो वो कंफर्टेबल हो गए। मेरा पहला दिन था और पहले दिन ही उस दिन मुझे पहली दफ़ा पता चला, आई थॉट कि दो कैमराज होंगे, एक्शन रिएक्शन होगा, वो बोलेंगी जब तो मैं उस वक्त रिएक्शन दे दूंगा तो कैमरा पकड़ लेगा उसको। तो मुझे तो बाद में पता चला कि भाई पहले तो एक कैमरा सिर्फ होगा, ठीक है, एक कैमरा पहले मेरे ऊपर होगा, मैं अपने सारे डायलॉग बोलूंगा, वो दोनों स्क्रीन पे होंगी भी नहीं, फिर जेरल्डीन पे कैमरा, वो जब ठीक हो जाएगा मेरा, जितनी दफ़ा गलत होगा मैं दोबारा करूंगा, फिर जब वो ठीक हो जाएगा फिर जेरल्डीन पे जाएंगे, फिर उसके ऊपर कैमरा होगा, फिर वो ठीक करेगी, जब तक वो ठीक नहीं करती, जहाँ जहाँ गलती करती है वो रीटेक होगा, फिर कैमरा पूर्वी जोशी पे जाएगा और फिर पूर्वी जो हैं वो करेंगी, जब तक वो ठीक नहीं करती वो चीज़ मतलब कन्फर्म नहीं होगी। अब ये तीन बंदे हैं तो एक ऐसा शॉट भी होगा जिसमें ये तो बताते हैं ना कि तीन बंदे टेबल पे बैठे हुए हैं, तो फिर एक और शॉट होगा उसको भी जब तक हम सही नहीं करेंगे, तीनों अपनी अपनी लाइन सही नहीं बोलेंगे, उसमें से भी एक शॉट लेंगे वो। तो इस तरह ये सारे, तो अगर वो एक दफ़ा इतना भी कर देते ना कि पहला कैमरा पूर्वी जोशी पे लगा देते और मैं और जेरल्डीन प्रैक्टिस कर लेते, फिर दूसरा उसी दफ़ा जेरल्डीन पे लगा देते या सेकंड पे मेरे पे भी आ जाता तो खैर था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पता नहीं खान साहब क्या करेंगे, वो इतने बेचारे मेरे सेल्फ टेप से, उन्होंने खुद मुझे कहा कि आप इतने अच्छे सेल्फ टेप आपने किए, आप तो कमाल करेंगे, तो वो उन्होंने पहला ही कैमरा मेरे बूथे पर लगा दिया। तो अब जब उन्होंने मेरे लगाया तो मैं तो अर्थ हो गया। मैंने कहा ओ ये तो मेरे भी आ गए, अच्छा अब मैं क्या करूँ, हमने मेथड एक्टिंग की एक्टिंग सीखी हुई है, ठीक है। हर चीज़ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बंदा इस तरह शायद बताता नहीं है कोई, या एक्सप्लेन नहीं करते, लोग कहते हैं जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब मेथड एक्टिंग में आपने रियल करना है चीज़ को, एक्टिंग नहीं करनी, बस ये एक्टिंग है कि आपका सीन हुआ, आपने एक्टिंग नहीं करनी। तो जब मैं बैठा सीन करने के लिए, तो अब मैं अगर अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, अपनी बेगम से बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ में अगर आप ये बात करें तो आप क्या मियाँ बीवी से या बेटी से बात करते करते खाना छोड़ देते हैं, आप खाना खाते खाते बात करते हैं ना। तो उन्होंने खाना डाला, अब मैं साथ कांटा चम्मच भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं साथ खा भी रहा हूँ, वो साथ मैं पानी भी पी रहा हूँ, साथ में बातें भी कर रहा हूँ, मुस्कुरा भी रहा हूँ, वो तो चले हो गए। उन्होंने कहा ये क्या है भाई। तो उनको मैंने कहा आई एम ट्राइंग टू मेक इट ओरिजिनल, कहते ओए होए, उन्होंने कहा डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट से द लाइंस। तो मैंने कहा उन्होंने फिर मुझे नई प्लेट दी, फिर मेरे आगे खाना उन्होंने डाला, मैं क्या ओके इसमें क्या है, तो फिर मैंने लाइनें बोल दी और फर्स्ट सीन ही ओके हो गया। अब मुझे तसल्ली ना हो एज एन आर्टिस्ट के भाई ये तो अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैंने सिर्फ लाइनें बोलनी, अभी तो मुझे एक्टिंग करनी। तो उन्होंने कहा एक्टिंग की जरूरत नहीं, एक्टिंग हो गई। मैंने कहा अच्छा ठीक। तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये तो फिर बहुत आसान है कि एक चीज़ को 15 दफ़ा बोलना है हमने और दूसरे लोगों के साथ रिएक्शन एक्शंस भी आपने करने हैं, तो ये तो फिर मैंने कहा चलें ये तो फिर हो जाएगा।
1: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: Back to school tips on Inspire FM. Be prepared to have a new teacher and maybe a new class. You are getting older and closer to the end of school, so your class will change so that it is more catered to you. Just enter with a smile and with a positive attitude to learning. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and

0: Repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
1: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
0: We can also offer guaranteed rental income.
1: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
2: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
3: The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "The most blessed nikah, marriage ceremony, is the one with the least expense spent on it."
4: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
5: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
6: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
8: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM.
9: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
10: So azadi to itna mushkil aapne kiya ke matlab koi aapko aap pe hi camera hai aur aap hi sab kuch kar rahe hain warna to ye hota hai na ki baat reply ho rahi hai to aap jawab de rahe hain to wo ek alag hota hai lekin sirf aap par hi rakh ke pure expression lana aur aap matlab aap direct bhi kar rahe the unko ke is tarah se karna hai kyunki ye waqai badi natural cheez hai ke aap khate hue to rukte thodi hain
8: lekin unko aisa nahi chahiye hota na wo basically jab aap khate hain to tuk tuk ki awaaz bhi aati hai cheezein bhi aati hain to wo usko mazid simple karna cha rahe the तो कई लोग जो होते हैं ना वो सिंपलिस्टिक तरीके से सीन्स लेते हैं विच इज़ परफेक्टली फाइन आपको जो डायरेक्टर बोलता है आपने वो करना होता है तो पूरी फिल्म में मुझे सिर्फ डायरेक्टर ने दो दफ़ा इंस्ट्रक्शंस दी उसके अलावा फर्स्ट टेक सेकंड टेक में सारा कुछ हो जाता था उन्होंने बड़ी तारीफ करते थे बड़ा प्यार करते थे और कभी मुझसे किसी ने नहीं कहा कि ये सीन ठीक नहीं हुआ इसको दोबारा कर दें बल्कि मैं खुद कहता था एक दफा और कर लें एक दफा और कर लें
10: नहीं वो रोल तो बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना कि अंगूठी में नगीने की तरह क्योंकि आप तो हैं भी माशाल्लाह से पठान, और आपका जो एक कैरेक्टर था वो उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, बल्कि आप उनको गाइड कर रहे थे कि इस तरह नहीं ये चीज इस तरह।
11: उर्दू के में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, उसकी बहुत सारी जो उर्दू उसमें बोली गई है वो मैंने लिखी है, क्योंकि जो पहले उर्दू लिखवाई गई थी वो यहाँ की बॉर्न रेज लेडी से लिखवाई गई थी, तो फिर वो उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, आप जनाब और इस तरह की बातें नहीं होती उसके अंदर, तो आपने उसको बहुत लाइट सा रखना होता है, जैसे घरेलू तरीके में बातचीत होती है। आपने देखा होगा जब भी ये पाकिस्तानी फिल्म्स बनाते हैं, या पाकिस्तानी फिल्म्स हॉलीवुड में भी बनती हैं या इंडिया में भी बनती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की उर्दू और जनाब बोलना शुरू कर देते हैं। जनाब वहाँ कोई भी नहीं बोलता, वो सिर्फ मजाक के लिए कहते हैं। सो एग्जैक्टली बहुत, फिर उसकी ट्रांसलेशन भी हमने की, फिर उसके बाद मैंने और पूर्वी ने बहुत सारी चेंजेस भी की उसके अंदर लाइनों में और चीज़ों में, तो बहुत। फिर वहाँ पे उर्दू के एक टीचर भी थे, वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे आए थे, उनसे भी कंसल्ट किया गया था, और फिर उनको मैंने ही कहा था कि ये जो लेडी तलाक दे रही हैं ये सीन नहीं हो सकता, ये इस्लाम में जायज़ नहीं और ना ही इसको कोई मानेगा, लेकिन वो एडमेंट थे कि नहीं वो बीबी से तलाक दिलवानी है तीन, वो उसके ऊपर बड़ा उनको उनसे उन्होंने भी कहा कि ये एक मसला खड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि ये है ही नहीं ना रिलीजन के अंदर, है ही नहीं, खुला ले सकती है लेकिन तलाक नहीं दे सकती, लेकिन वो एडमेंट थे, वो यहीं की बॉर्न एंड रेज, उन्होंने कहा नहीं हम दिला के छोड़ेंगे, हमने कहा दिला दें फिर साढ़ा की फिल्म में तो उस डायरेक्टर ने और राइटर ने करने ना, वो तो उनका काम है, आप तो सिर्फ बात है। आप तो सिर्फ बात बता सकते हैं। और फिर और भी दो चीज़ें थी जो मैंने फिल्म के अंदर मुझे उसमें जो फ्लॉज नज़र आए थे, मैंने उनसे ज़रूर बात की थी उसके बारे में कि हमारा काम है जब आपको कोई झोल नज़र आए किसी चीज़ में, तो बेचारे थोड़े से घबराते भी थे। फिर जब मैंने गाना उसमें शुरू किया, वो मुझसे पहली सी मोहब्बत, वो आगे से मुझसे डायरेक्टर आई, मुझसे पूछती आप सिंगर भी हैं, मैंने कहा नहीं आज से पहले तो नहीं था, तो मैंने कहा जी मैं तो एक्टर भी नहीं था पहले, तो मैं तो रेडियो का बंदा हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे, उन्होंने फारसी में मुझसे कुछ पूछा, फिर अरबिक में कुछ बातें हुई, फिर जेरिलिन को मैंने वो रिकॉर्ड करके दी, वो जो आखिर में नमाज रिकॉर्ड करके दी ताकि वो जो आखिर में पढ़ती है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें थी। और ये सीन थोड़े से चेंज भी किए गए हैं, पहले पहला सीन जो हमारा था वो अफ्तारी के ऊपर था, तो उसमें मैंने हाँ जी अफ्तारी की दुआ जो है वो मैं रोज़ा इफ्तार कर रहे होते हैं, तो वो था जो बदल दिया गया सीन। इस किस्म की बहुत सारी चेंजेस की गई हैं फिल्म के अंदर, तो आपको जो मिला है इंशाल्लाह किसी दिन अगर हमें डिलीटेड सीन मिले तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी जगह पे एक्टिंग हुई हुई है जो काटती है।
10: माशाल्लाह से आप इस मामले में भी बहुत लकी रहे अजाजी, लकी रही है क्या कि आपने जो सॉरी भाई का प्ले किया था उसमें जो नुमान एजाज साहब, इतने सालों एक्सपीरियंस, इतने एक्सपीरियंस, एंड दैट वाज योर फर्स्ट स्टेज प्ले जो आपने एक्ट किया था।
11: नहीं, मैं उससे पहले उस्मा गिलानी जो कि उनसे भी सीनियर हैं, तो किया क्या हमने तीन काम किए, और वो तीन काम इतने सीनियर और इतने कमाल लोगों के साथ किए जो कि लेजेंड्स हैं अपने अपने, तो उनके साथ काम करने से जो एक्सपीरियंस आपका 10-15-20 साल में होना था ना, वो 3-4 एक्सपीरियंसेस में ही हो गया। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है, आप जब भी काम करें जो टॉप ऑफ द लिस्ट बंदा हो ना उसके साथ आपको काम करना चाहिए, ताकि उसमें से बहुत सारी लर्निंग हो सकती है आपकी जो वैसे नहीं हो सकती।
10: जी बिल्कुल,
11: खुश रहिए, हमारे साथ रहिए, मेहरबान कदरदान, और भी लोग हैं हमारे साथ। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर किक स्टार्टिंग द शो, और उससे हमें हाला याद आ गई बड़े दिनों के बाद। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर।
12: जी सलामकुम।
11: जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, कैसी हैं?
12: बिल्कुल मजे में।
11: अभी बोर तो नहीं किया हमने और अफसन जी ने आपको? हम दोनों ने मिलके बोर तो नहीं किया आपको?
12: नहीं, मैं सुन रही थी।
11: जी
12: तो मैं ये कहूंगी कि जो आप लोगों ने रेडियो शो शुरू किए, वो मैं बेसिकली मैं बता दूं कि मैं ऑडिटरी पर्सन हूँ और मैं अपनी बुक्स भी घंटों सुन सकती हूँ, तो मुझे आई एम अ लिसनर ज्यादा, तो मुझे मजा ये आता है कि अच्छा कंटेंट और अच्छा बोलने वाला हो या अच्छी बुक हो तो मतलब यू एंजॉय। लेकिन जब से फेसबुक और यूट्यूब और डिफरेंट चैनल्स हैं, आप लोग चले गए हैं उस पे विजुअल पे, ये बताएं कि करते वक्त मैं ये कहूंगी एनर्जी डिवाइड हो जाती है।
11: हाँ जी,
12: विजुअल में और ऑडिटरी में और दूसरी चीजों में भी
11: बहुत मुश्किल।
12: डू यू थिंक कि यू जस्टिफाई विद ऑडियो एंड विजुअल एट द सेम टाइम, और कुछ चीजें विजुअल खा जाती हैं? जो आप हमसे बातें करते थे शुरू के प्रोग्राम्स में, तो वो बिल्कुल ही फोकस होता था कि हम सिर्फ लिसनिंग पे फोकस कर रहे हैं।
11: जी
12: अभी इस वक्त जो है आप लोगों के कई महाज हैं कि वहां पे आपको देखना है, कमरा साफ है, लाइट सही है, साउंड सिस्टम तो चलो उसके साथ है, लेकिन द अटेंशन इज डिवाइडेड। दूसरा ये बताएं कि इंसानी नेचर में हमारी जिंदगी खुद ड्रामा है, एक तरह से देखा जाए इट्स ऑन गोइंग ड्रामा फॉर 80-90-100 ईयर्स। इसके बावजूद हम सब दूसरे ड्रामे देखने और उसका मजा लेने या उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दैट कीड़ा।
11: ये जो ये सवाल बहुत ही अच्छा है, मैं थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन पहले कर दूं। क्वेश्चन आपका ये कि हमारी अपनी ज़िंदगी में इतने ड्रामे होते हैं और हर वक्त कुछ ना कुछ लर्निंग हमारी हो रही होती है उन चीज़ों के बारे में, तो फिर हम दूसरे जो ड्रामे हैं, जो टीवी के ड्रामे हैं, जो बाकी दुनिया के जो ड्रामे हो रहे हैं, उसमें हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों है वो, और ये कीड़ा क्यों है कि हमें हर एक की ज़िंदगी में और बाकी लोगों की ज़िंदगी के जो ड्रामे इतने शौक से हम देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग का काम है ना, अगर आप पीछे जाएँ इंसान के बारे में जब आप सोचने लगते हैं ना, तो अगर आप किताब खोलते हैं रब की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि रब ने आपको बहुत सारी कहानियाँ हमसे हज़ारों साल पहले की जो कौमें थी उनकी भी कहानियाँ सुनाई और उनके बारे में हमें बताया, क्योंकि 3, 4, 5, 10 हज़ार साल पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं थी हमारे पास कि इस तरह हमें डायरेक्ट उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आती, जैसे ज़ुल्करनैन के ज़माने के बारे में बात की गई है, इस तरह और बहुत सारी बातें की गई हैं। तो इंसान कहानियों में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसके अंदर रब ने एक बहुत सारी एबिलिटीज़ के साथ एक इंक्विजिटिवनेस रखी है। इंक्विजिटिव होने की वजह से उसके अंदर एक इनबॉर्न बाय डिफ़ॉल्ट क्यूरियोसिटी जो है वो इंस्टॉल्ड है। अब उस क्यूरियोसिटी के वो इसलिए है कि हम अपने बारे में खोजें, अपने बारे में जानें, दुनिया के बारे में जानें, तारीख को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे हम कोई नतीजा अखज करें, उससे हम लेसन लर्न के साथ आगे अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर सकें, बार बार वो गलतियां ना करें, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस के साथ उनकी कहानियों से इबरत भी हासिल कर सकते हैं, सबक भी हासिल कर सकते हैं और अपनी डगर भी हम जो है वो मुतय्यन कर सकते हैं कि अपना रास्ता जो है वो किस तरफ होगा। इसलिए इंसान को इनक्विजिटिवनेस जो है वो उसकी ज़ात के अंदर क्यूरियोसिटी डाली गई है। हमने क्या किया है, हमने क्योंकि हर चीज़ को हम नीच तरीके से सोचते हैं, जैसे हम रब जो है वो लिमिटलेस है, लेकिन हमने क्या, क्योंकि हमारे जहन की जो हमारी जो सोच है वो बहुत लिमिटेड है, वो हमारी सोच नीच है, तो हमने किया कि रब के कॉन्सेप्ट को नीच बना दिया कि रब सिर्फ मेरा है या मेरे मसलक से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनका है या मेरी सोच से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनका है, बाकियों का नहीं है और मैं ही जो हूँ वो आला वर्फा हूँ और मैं ही जन्नत में जाऊँगा। तो ये हमने ये इस तरह की सोच से रब अनलिमिटेड को और लिमिटलेस को लिमिटेड कर दिया ताकि हम उसका अहाता कर सकें। बिल्कुल इसी तरह हमारी ये जो दूसरी चीज़ें हैं, जो ड्रामे जो ज़िंदगी में है, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमें जब एक्टिंग स्कूल में थे, हम मेथड एक्टिंग जब हम सीखने गए हॉलीवुड में, तो उन्होंने पहली 2-4 क्लासेस में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात बताई। उन्होंने कहा कि जो लोग अच्छे एक्टर्स होते हैं वो इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में ड्रामा ना हो, वो स्क्रीन पर ड्रामा करें। अगर उनकी अपनी ज़िंदगी में ड्रामा होगा और बहुत ड्रामे होंगे तो फिर वो एक्टिंग पर फोकस नहीं कर सकेंगे। तो एक्टर की लाइफ में ड्रामा कम से कम होना चाहिए, वो बोरिंग होनी चाहिए या अनइवेंटफुल भी हो सकती है, लेकिन उस जो स्क्रीन के ऊपर जो उसने ड्रामा करना है उसकी जो प्रेपरेशन या उसका जो फोकस है वो वहाँ पे होना चाहिए। तो एक ही चीज़ को बार बार देखने से आप बार बार एक ही चीज़ सीखेंगे और वो टाइम ज़ाया करने की चीज़ है। तो जो आपको जो क्वेश्चन है, दूसरों की लाइफ में तब आपको इंटरेस्ट होता है जब आपकी अपनी पर्सनल कोई लाइफ नहीं होती है। आप गाड़ी चलाते हैं, आप कितना बैक व्यू मिरर में देखते हैं? कम से कम जब आपको ज़रूरत होती है, जब आप साइड चेंज करने लगते हैं या जब छोटी मोटी कोई चीज़ होती है या पीछे का ट्रैफिक आपको किसी कभी कभी कभी आप बैक व्यू मिरर में देखते हैं, ज़्यादातर आप आगे देख के गाड़ी चलाते हैं या राइट लेफ्ट में भी थोड़ा बहुत आप देखते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, वो भी तब, वरना आप सीधा आगे की तरफ। ज़िंदगी भी इसी तरह है कि आप रेट्रोस्पेक्ट में चीज़ों को, पास्ट में चीज़ों को तब देखते हैं कि आपने क्या सीखा था, क्या समझा था। राइट लेफ्ट आप तब देखते हैं जब आप अपनी अलाइनमेंट सीधी कर रहे होते हैं और आप प्लान कर रहे होते हैं कि आगे जो ट्रैफिक है मुझे उसके हिसाब से गाड़ी की रफ्तार क्या रखनी चाहिए और मुझे किधर गाड़ी को लेके जाना है और किधर नहीं लेके जाना। जैसे ही आगे के ट्रक या बड़ी चीज़ आती है आप हमेशा उसके राइट या लेफ्ट जाना चाहते हैं, क्यों? बिकॉज इंसान का जहन जो है वो देखना चाहता है आगे क्या है, क्योंकि जब आपको नज़र आना बंद हो जाता है तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, डायरेक्शन गुम हो जाती है। इसकी सिंपल सी मिसाल आपको देता हूं मैं, कभी शावर लेते हुए आप आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो जब थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा आपको टोटली नॉर्थ जो है वो और है, आपका मुँह ही किसी और तरफ होगा, एक दो मिनट में आप सब भूल जाएंगे क्योंकि आँखें बंद करते ही आपकी डायरेक्शन जो है वो गुम जाती है। ठीक है, जैसे पानी कान में पड़ जाए तो क्या होता है, तब भी आपका जो ना बैलेंस आपका ख़राब हो जाता है, बंदा गिरने लगता है, चक्कर आने लगते हैं बंदे को। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी भी हमारी है। तो ड्रामा जो बाकी लोगों की ज़िंदगी में है या इर्द गिर्द हो रहा है उससे आपने सीख लिया, फिर आगे बढ़ गए। बार बार एक ही ड्रामा देखना और एक ही तरह के काम करते रहने से फिर आप कुछ नहीं सीखते, बल आप उस ड्रामे का एक हिस्सा बन जाते हैं और वो ड्रामे का जो ना ड्रॉप सीन जो है वो आप खुद ही हो जाते हैं।
12: बिल्कुल
11: तो ये
12: बिल्कुल.
11: एक पॉइंट था वो ड्रामे वाला. उससे पहले जो आपने जो क्वेश्चन किया था वो भी बहुत अच्छा है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ. सवाल आपका ये था कि आपने कहा कि जब आप रेडियो पे शो करते थे तो सिर्फ आवाज़ से आप तमाम चीज़ें करते थे और आपका फोकस जो था ना सिर्फ आवाज़ के ऊपर और अपना मैसेज देने के ऊपर होता था. लेकिन अब क्योंकि विजुअल भी हो गया, डिजिटल मीडिया भी हो गया, तो इसमें तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती होंगी. तो इसका जवाब है बाकी लोगों के लिए तो हुई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हुई. ठीक है जी, क्योंकि मैं जब प्रेजेंट होता हूँ ना तो फिर मैं प्रेजेंट होता हूँ और मैं इर्द गिर्द कुछ नहीं देखना चाहता, कुछ नहीं सोचना चाहता. मैंने क्या पहना हुआ है, मेरे पे लाइट्स पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं बोलता हुआ कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखना चाहता. लेकिन जब एक आगे कैमरा लगा होता है, उस कैमरे वो कैमरा स्क्रीन के मैं मिडिल में बैठा हूँ या नहीं बैठा, लाइट्स प्रॉपर लग रही हैं या नहीं, और ये सब क्यों हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा कि मैं अच्छा लगूँ. इस बात को भी गौर से सुनिएगा. कैमरे के आगे जब आप बैठते हैं ना, क्योंकि मैंने एक्टिंग पढ़ी है इसलिए मैं आपको बताने की ये जसारत कर रहा हूँ कि कैमरा है क्या चीज़ और वो क्यों हर बंदा कहता है कि जी वो कहते हैं ना पिक्चर इज़ वर्थ थाउजेंड वर्ड्स. वो एक तस्वीर जो है वो आपकी बहुत सारी बातें जो आप शायद हज़ार अल्फाज यूज़ करके बताएं वो आपकी एक तस्वीर दे सकती है. बिल्कुल इसी तरह कैमरा जो है ना, वो तस्वीर तो छोटी चीज़ है, कैमरा एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है. आप जब आंख नहीं मिला पाते या जब आप ऑथेंटिक नहीं होते या जब आप फिल्म में आपने देखा होगा जब आप एक्टिंग नहीं कर पाते तो वो और छोटी से छोटी चीज़ कैमरा पकड़ लेता है. ठीक है जी, तो इसलिए जब आप कैमरे के आगे बैठे होते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और दूसरा बंदा जो आपको देख रहा है उसके हिसाब से आपने चीज़ों को बैलेंस में रखना है. अगर आप स्क्रीन पर बैठे हैं तो आपको स्क्रीन में दरमियान में होना चाहिए, माइक आपके सामने होना चाहिए, लाइट जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कहीं कोई चीज़ गलत, अगर कोई शेडो भी आएगा तो बार बार बंदे का वहाँ पे जहन जाएगा. आपके चेहरे के ऊपर अगर कोई चीज़ चमक रही है माथे, जो कि पसीना कभी कभी आ जाता है, उसको भी डैब करके हटाना पड़ता है. वरना अगर कोई चीज़ बहुत चमक रही है तो काम की बात सुनते सुनते अगर उनका जहन जो है वो आपकी माथे की चमक पर गया तो वो बार बार उसी को देखते रहेंगे. वो जो माइक पेंस नहीं था उसको मक्खी बैठ गई थी, तो हर बंदे ने सारी उस कोई बात किसी ने नहीं सुनी, बस मक्खी के ऊपर सारा तबसरा था. इसी तरह जो आपके बाल हैं, जो आपकी शक्ल इस वक्त लग रही है, जैसे आपने कपड़ा जो आपने पहना हुआ है, ये सब चीज़ों का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप पॉइंट कोई पुट अक्रॉस करना चाहते हैं या कोई रीज़न एंड लॉजिक देना चाहते हैं किसी इंसान को कि वो उसको गौर से सुने, आप कैसे लग रहे हैं कि बजाय वो जो बात की गई है वो उसके दिल को पकड़े, बहुत मुश्किल हो जाता है. इसीलिए आपको पता है स्क्रीन का अटेंशन स्पैन कितना है, YouTube का आपको पता है जो उसके जो व्यूज़ होते हैं वो 3 सेकंड के बाद काउंट होता है, यानी कि लोग 3 सेकंड से पहले ही स्किप कर देते हैं. इतना इम्पॉर्टेंट है स्क्रीन के ऊपर जब आप आएँ तो आपकी आवाज़, आपका अंदाज़ और जो भी आप कहना चाहते हैं उसको पहले 4-5 सेकंड में जो आप कहते हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट है, वरना स्किप कर दिए जाएंगे आप. तो बिल्कुल इसीलिए कैमरा जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके सामने काम करना और उसके तमाम लवाजमात पूरे करने की कोशिश करना. इसीलिए अभी हमने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ वेबकैम से हमने कोशिश की आप लोगों तक चीज़ें पहुँचाने की, बैकग्राउंड यू नो बहुत सारी और चीज़ें. जैसे जैसे हम चीज़ों को जानते जा रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लोगों के साथ हम काम नहीं करते थे शुरू में भी, जितने लोग भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडियंस और यू नो बांग्लादेशी यहाँ पे आते हैं वो सब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई भी शेफ़ नहीं होता रेस्टोरेंट्स के अंदर. सब लोग यहाँ पे आते हैं उनको पता चलता है नान लगाने के बड़े पैसे मिलते हैं, $3,000-4,000, तो फिर वो नान बाई बन जाते हैं. ठीक है जी, जिसको इंग्लिश में सू शेफ़ कहते हैं. ठीक है बिल्कुल इसी तरह वो यही काम करता है एक्चुअली. लेकिन बाकी जितने भी लोग इस वक्त रेस्टोरेंट्स में खाना पका रहे हैं सब ने यूट्यूब से सीखा हुआ है. इसमें से कोई पक्का मिसालची जो है ना पिछले जो ज़माने का खाना पकाने वाला जो है ना वो बहुत कम मिलेगा आपको. ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह सोच के आपने ये बात को आगे लेके चलना है कि लोग दे कीप लर्निंग अलॉन्ग द वे, ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं. और फिर और कभी कभी हम जब लोगों को ढूंढने निकलते हैं तो सालों लग जाते हैं, हमें काम का बंदा नहीं मिलता. और फिर मुसलसल कोशिश करने के बाद जब आपको बंदे मिलते हैं तो आपको पता चलता है जो काम 2-3 दिन में हो सकता था इसके लिए हमारे 2-3 साल लग गए, लेकिन वो प्रोसेस है इन तमाम चीज़ों का. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव भी हो रही हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा रेडियो आज़ाद पर भी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं. और अभी भी हमने दुनिया में बाहर निकलने की उस तरह की कोशिश नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी और उसके भी कुछ रीजंस थे। लोग जो है ना, ये जो बातें मैं आपसे करता हूँ या रेडियो आज़ाद पे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, इनकी मार्केट वैल्यू दुनिया में उतनी नहीं है जितनी आप समझते हैं। ठीक है, दुनिया में और बहुत कुछ बिकता है। अगर इसकी जगह हम एक बिल्ली रख लेते और बिल्ली को अजीब अजीब तरीके से गुदगुदाते रहते और उसकी वीडियो बनाते तो मिलियंस में व्यूज़ मिलते हैं। और जितनी आप निकम्मी स्टूपिड बातें करते हैं उतने आपको दुनिया में ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। कभी उसको लोग इन्जॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं और ज़्यादातर लोग मेंटल कैलिबर भी हमारा इतना ही है और इतनी है हमारी अकल और समझ बूझ भी है। ठीक है, क्योंकि जब आप हैवानी हालत में और एक धक्का इनर्शिया के स्टेज में आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो तो काम की अकल की समझ की बातें जो है ना वो आपको, ये बातें आपको लगती हैं जब 30, 32, 35, 40 साल आपकी उम्र हो जाती है ना, और जब आपको पता लगता है कि जो कुछ आपने अपने बारे में सोचा था, जो कुछ दुनिया के बारे में सोचा था और जो कुछ आपने रब के बारे में और आखिरत के बारे में सोचा था वो वैसा था ही नहीं, वो कहानी कुछ और है। अब फिर से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी, उसको मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। उसको बहुत सारे लोग उस वक्त तक बिटर हो चुके होते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो रिएक्शनरी एक लाइफ जीते हैं, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं। आज का क्लिप बड़ा अच्छा था, प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ज़िंदगी के साथ साथ ना, आपने देखा होगा हर बंदा लर्निंग पे बड़ा जोर देता है लेकिन साथ साथ अनलर्न करना भी चीज़ों का बहुत ज़रूरी होता है। जब हम बच्चे थे तब से लेके जवानी तक और मिडिल एज तक हमने बहुत सारी ऐसी बातें रास्ते में पिक कर ली हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है जी, जो कि हमारे लिए इंजूरियस टू हेल्थ है, मुजरे सेहत है हमारे लिए, जहनी सेहत के लिए भी, जिस्मानी सेहत के लिए भी, रिश्तों की सेहत के लिए भी, और ज़िंदगी में जो हमारा मकसद है उसकी सेहत के लिए भी। तो इनको आपने अनलर्न भी करना होता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आज भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। अगर आप इंसानों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे ना तो फिर आपकी ज़िंदगी बेइंतहा मुश्किल हो जाएगी। वो शौहर जो बीवी पे ट्रस्ट नहीं करता उसकी ज़िंदगी अजाब में है। वो बीवी जो शक करती है अपने शौहर पे, वो हर वक्त तकलीफ़ में, उसने खुद अपने आप को आग लगाई हुई है। ठीक है जी, और जो लोग अपने पार्टनर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, जो लोग जिनसे अपने बिजनेस जो वेंडर्स हैं आपके उस पर ट्रस्ट नहीं करते, जो एडवर्टाइजर्स हैं आप उनके या वो आपके उन पर ट्रस्ट नहीं करते, ये सारे का सारा काम ट्रस्ट पे खड़ा है। रब के साथ जो हमारा रिश्ता है, आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं चीज़ों को, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सब एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर खड़ा है। इसीलिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। इंसानों के ऊपर एतमाद करना, आँख खुली रखना, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना, ये बहुत ज़रूरी है। कब तक आप हर वक्त अन्ना नहीं था जो 24 घंटे चुकन्ना रहता था, पता नहीं वो क्या करता रहता था, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कॉर्टिसोल बॉडी में इतना स्क्रीशन उसकी होती है, बंदे को समझ नहीं आता, बंदा फामा हो जाता है, ना उसको नींद आती है ना कुछ। और मैं जितने लोगों की ज़िंदगी देखता हूँ इतनी अनसर्टनिटी में मर रहे हैं, वो किसी पर वो भरोसा नहीं करते, किसी पर भी। और यकीन करें, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक जिन लोगों को भी देखा है ना, वो किसी पर भरोसा नहीं करते। मैं उन पर कभी भरोसा नहीं करता, कभी भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो जिस चीज़ पे भरोसा करते हैं वो उनकी अपना जहन है। और मैंने उनको हमेशा ज़िंदगी में मार खाते देखा है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर रियली रियली स्टूपिड इन द एक्शंस दैट दे हैव टेकन इन देयर लाइफ। इंसान कभी स्टूपिड नहीं होता, हमारी चॉइसेस स्टूपिड होती हैं, क्योंकि इंसान तो बहुत रिफाइंड बीइंग है, लेकिन हमारी चॉइसेस चीख चीख कर हमें बता रही होती हैं कि हमारी चॉइसेस स्टूपिड है। जिन लोगों को हम चुनते हैं वो हमारी स्टुपिडिटी होती है, जिस एनवायरनमेंट को हम चुनते हैं किसी काम के लिए वो हमारी स्टुपिडिटी होती है। एक सेमो थोर वाली ज़मीन के अंदर आप बीज डाल देते हैं और आप फिर कुदरत के साथ लड़ पड़ते हैं कि भाई मेरा फसल नहीं लगी, मेरे साथ जुल्म हो गया, आपने प्री रिक्विजिट्स पूरे नहीं किए। तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी में, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो लोग किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, किसी पर भी नहीं, सिर्फ अपने जहन पर ट्रस्ट करके वो चलना चाहते हैं और उनका जहन कॉन्ड है पहले से, उन्होंने कुछ चीज़ें जो बचपन में उनके साथ हुई हैं उसको अपने साथ आज भी बांध रखा है। जो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता ना, उस पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। अच्छा दोस्त पाने की सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब तक आप अच्छे दोस्त की डेफिनेशन को समझेंगे नहीं, अच्छा दोस्त बनने की क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं होंगी, आपको कभी अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। आपको हर चीज़ के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, डिज़र्व करनी पड़ती हैं चीज़ें, और अगर आप नहीं डिज़र्व करेंगे ना तो मिली हुई चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी वक्त के साथ साथ। ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखा, इसीलिए मैं कुछ चीज़ों के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। मैं अपने दोस्तों के, इसीलिए मैं ही अपनी ज़िंदगी में आज तक एक ऐसा बंदा अपने आप को मिला हूँ जो दिल से ये कह सकता है कि मेरे जो 5-6 दोस्त हैं उससे बेहतर मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी, मैं रेडियो पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दुनिया में लोगों को मिलके भी मैं उनको बताता हूँ मेरे दोस्तों ने क्या किया, वो कहते हैं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। اور میں اکثر جب لوگ مجھے گرانے کی، توڑنے کی، تکلیف دینے کی، پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے فیملی سے کریں، چاہے باہر سے کریں، چاہے بزنس وائز لوگ کریں، یا جس آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن میں جاتا ہوں، لوگ یہ پوری کوشش کرتے ہیں، وہ مجھے کبھی نہیں توڑ پاتے، ایک وجہ سے صرف، کیونکہ جیسے میرے دوست ہیں، وہ مجھے کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. 40 سال تک ایسا نہیں ہوا تو میں کیسے مان جاؤں آگے ہوگا؟ اگر ہوگا بھی تو ایک جائے گا، دو جائیں گے، تین جائیں گے، چار، سب نہیں جائیں گے. تو بالکل اسی لیے یہ جو رشتے ہیں اس کے اوپر کام کیا ہوتا ہے، اس پہ بہت زیادہ ٹرسٹ انسانوں کے اوپر کرنا پڑتا ہے جو آپ کسی پہ نہیں کرتے. اور کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن کیا وہ خود ٹرسٹ کے قابل ہیں؟ یہ سوال میں ان سے ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو کیا آپ کسی کے ٹرسٹ کے قابل ہیں؟ اور جواب اکثر نا میں ہوتا ہے، کیونکہ جب جب میں نے ان پہ ٹرسٹ کیا، ان لوگوں نے اپنا کام پورا نہیں کیا. لیکن ان کے پاس لاجکس، ریزنز سارے پورے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس بہانے، آپ نے ایک دفعہ اپنے ذہن کو صرف ایک چیز اگر آپ اپنے آپ میں بدل لینا تو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو. آپ جب غلطی کرتے ہیں نا تو اس کے بہانے نہ بنائیں، اس کی ان لاجیکل لاجکس نہ دیں، اس کی جسٹیفیکیشنز نہ دیں. آپ کبھی نہیں سیکھیں گے، کبھی بھی نہیں سیکھیں گے، کیونکہ جس ذہن کو بہانے سوجنے لگے اور اس نے اینڈ ہی کوڈ گیٹ اوے ود دوز بہانز، ایکسکیوزز، ان لاجیکل لاجکس، وہ کبھی چیز نہیں سیکھے گا. اس آدمی کو نقل کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، بوٹیاں بنانے کی عادت ہو جاتی ہے، کتاب رکھ کے پیپر دینے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ کبھی علم نہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا. اس کو پڑھائی سوجتی نہیں ہے، اس کو سوال یاد ہی نہیں ہوتے. میں جانتا ہوں لوگوں کو، میرے ساتھ بہت سارے لوگ اسی طرح بڑے ہوئے ہیں، وہ تب بھی نقل مار رہے تھے، وہ آج بھی نقلیں مار رہے ہیں دوسرے لوگوں کی، اور کہیں نہیں پہنچے زندگی میں. زندگی میں فیل ہو جانا وہ بہت اچھا ہے، آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ کو شرم آ سکتی ہے، آپ غیرت پکڑ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کچھ اٹھ کر کر سکتے ہیں. لیکن اگر نقلیں مار کے آپ کو پاس ہونے کی عادت ہوگی، آپ اپنی دوستی میں بھی فیل ہوں گے، آپ اپنی بیگم کے سامنے، شوہر کے سامنے بھی فیل ہوں گے، آپ اپنی اولاد کے سامنے بھی فیل ہوں گے، آپ اپنے پارٹنرز کے سامنے بھی فیل ہوں گے، آپ رب کے سامنے بھی فیل ہوں گے. کیونکہ رب اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو حضور پاک کی کتنی خوبصورت بات، جو انسان انسانوں کا شکر گزار نہیں، وہ رب کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. بہت ساری چیزیں اس دنیا میں، مجھے خان جی کا وہ جملہ یاد آتا ہے، میں 6-7 سال کا تھا، ان کے پاس لیٹا ہوا تھا، میں کوئی بات کر رہا تھا کہ رب سے محبت کی ہم اکثر بات کرتے ہیں، رب کی محبت جو ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا رب کی محبت کا راستہ جو ہے نا، وہ انسانوں کے دلوں سے ہو کے گزرتا ہے. جو انسان انسانوں کے دل میں اپنے لیے محبت نہیں پیدا کر سکتا، وہ رب تک نہیں پہنچ سکتا. بہت چھوٹے تھے ہم، وہ اس وقت کوئی رومی کی کتاب پڑھ رہے تھے کوئی، یا جو ان کی بکس ہوتی تھیں، تو لوگوں کے دلوں سے گزرتے ہوئے ہی یہ راستہ بنتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں اکثر کہنا بھی چاہتا ہوں، اور میرے ارد گرد بہت سارے یہی باتیں کہنے کے لیے میں لوگوں سے نہیں ملتا.
13: اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں، نظمیں سننا چاہتے ہیں، تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں، مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر، آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے، اینڈرائڈ ہے، بلیک بیری ہے، اسمارٹ فونز ہیں، وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی لی تو پھر ملیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.
14: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
15: Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and duas. Ameen.
16: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
17: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन्स मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफोर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
18: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
19: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
20: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
21: You could offer a quality service that really is second to none.
22: Or you could have offers that are simply unbeatable.
20: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
23: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
24: Has it clicked yet?
23: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
25: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the Holy Quran by Sheikh Mishari Rashid Al-Fasi, Imam, Quranic reciter and nasheed artist from Kuwait, with English translation.

0: जी ओके, आपका सवाल है, मैंने बताया था अना मैं है और यहां इन्ना हम है, थोड़ी सी ग्रामर सीखनी पड़ेगी। तो ये अगर इन्नी होता तो ये मैं होता, ठीक है? जिस तरह उर्दू में है ना, मैं और मुझे और मेरी, तीनों लफ्ज किसके लिए हैं? मेरे लिए है। इसी तरह नहनु, ना, वो दोनों हम के लिए हैं, और अना और नी और ई वो मेरे लिए हैं। जब इन्ना आ जाता है तो साथ में इन्ना नहनु नहीं कहते, इन्ना कहते हैं हम के लिए। अगर ये अना होता तो ये इन्ना ना होता, इन्नी होता, इन्नी होता। जी ठीक, बेशक हम, थोड़ी सी ग्रामर, थोड़ी सी तकलीफ थोड़ी सी होगी ग्रामर सीखने से, लेकिन फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। जैसे डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना, वैसे अरबी होती है, शुरू में तकलीफ होती है फिर ठीक हो जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे जुमले की साख के बारे में। या बुनैया अकीम الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك, मेरे बच्चे नमाज को कायम कर, अच्छी बात की तरफ तलकीन कर, बुरे काम से रोक, और जो कुछ भी तुझे स्ट्राइक करे, जो कुछ भी तेरी तरफ आए, उस पर सब्र कर। واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور, बेशक ये बहुत यानी अजीमत वाले कामों में से है। अजीमत अरबी में, पता नहीं उर्दू में क्या सही लफ्ज़ होगा, जो कमिटमेंट जो ज़्यादा दिखाता है ना, और हिम्मत दिखाता है, बड़ी हिम्मत वाले कामों में से, इस तरह समझने बात को। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, यानी ये कोई छोटा काम कारनामा नहीं है, इससे बहुत हिम्मत, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। इसी तरह आगे कह दिया, लतुबलउन्ना फ़ी अमवालिकुम व अन्फुसिकुम, तुम्हें तुम्हारी तुम्हारे अमवाल में और तुम्हारी तुम्हारे अपने मामले में बहुत सारे इम्तहान दिए जाएंगे, तुम्हें तुम्हारा इम्तहान लिया जाएगा। وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا, और तुम्हें बहुत सारी तकलीफ देने वाली बातें सुनने को मिलेंगी उन लोगों से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, और उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, बहुत सारी तकलीफ अजियत देने वाली बातें तुम्हें सुनने को मिलेंगी इसकी। और तस्माउन्ना में है लाजमन, सुनने को मिलेंगी, बेशक सुनने को मिलेंगी। फिर कहा हुआ इन तस्बिरु व तत्तकु, और अगर तुम फिर भी सब्र करो और तकवे को थामे रखो, फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो फिर ये तो बहुत हिम्मत वाले कामों में से है। दोबारा वही ताबीर इस्तेमाल हो रही है ना, लेकिन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा तौकीद है, क्योंकि फ़ा का इजाफा किया गया है पहले से, उसमें भी एक ज़रा कलाम में ज़ोर ज़्यादा आ जाता है। और आप देखोगे पहली में कहा था जो भी मुश्किल आए उस पर सब्र करना, लेकिन यहाँ पर कुछ मज़ीद बात की है ना, कहा है कि तुम्हें बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, तरह तरह के इम्तिहान लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद कहा सब्र भी नहीं करना, सब्र के साथ क्या करना, साथ तकवा भी थामे रखना। तो फ़ा इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मज़ीद ज़ोर के साथ ग्रामर के एतबार से एक तीसरी मरतबा ये ताबीर, ये मुहावरा इस्तेमाल किया गया, वो तीसरा है, वला मन सबरा व गफ़रा फ़ा इन ज़ालिका लमिन, और इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले कामों में से है। ये जो लाम है ना, इन्ना दालिका ला मिन अज़्मिल उमूर, इसको अरबी में लामुल तौकीद भी कहते हैं, लामुल कसम भी कहते हैं, यानी कसम है कि ये बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले कामों में से है, इसमें कोई शक नहीं। यानी ये जो तीसरी दफा यही मुहावरा इस्तेमाल हुआ सूरत शूरा में, इसमें ज्यादा जोर है बाकी दोनों की निस्बत। तो सवाल पैदा होता है कि इसमें ज्यादा जोर क्यों दिया गया, और उनमें ज़्यादा जोर और बनिस्बतन कम जोर उनमें क्यों है। सब्र के दो पहलू हैं यहाँ पर, एक है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है और आपको बर्दाश्त करना है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप जवाबी कार्रवाई करने की आपके पास अभी सलाहियत नहीं है, आपके पास वो कुव्वत नहीं है, ना आपके पास वो इख्तदार है कि आप उसकी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई कर सकें, आपके पास अब क्या चाह रहा है, सब्र, ठीक है। और फिर यहाँ पहली आयत में भी जो कुछ मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए उस पर सब्र करना। अच्छा, पहले इंसिडेंटली ये हमारा मज़मून नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ें अहम हैं, ख़ास क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, तो उर्दू में कुछ अल्फाज जो कुरान में भी आते हैं ना, हम उसका गलत मायना ले लेते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मुसीबत है, मुसीबत उर्दू में कोई अच्छी चीज़ के लिए, बुरी चीज़ के लिए कहते हैं, बुरी चीज़ के लिए कहते हैं। अरबी में असाबा सवाब से निकला है, सवाब कहते हैं जब तीर मारो और बिल्कुल सही टारगेट पे जाके लगे ना, वो सवाब है, اسی لیے نئی عربی زبان جدید عربی زبان میں بھی دو, جس طرح ہم کہتے ہیں صحیح اور غلط, وہ کہتے ہیں ثواب ام خطا, ثواب ام خطا, خطا غلط کے لیے اور ثواب صحیح کے لیے. اصابہ کہتے ہیں جب کوئی چیز اپنے ٹارگیٹ پہ صحیح سے جا کے لگے. تو جب تیر صحیح ٹارگیٹ پہ جا کے لگتا ہے تو وہ مصیب ہے, وہ تیر مصیب ہے. اور بہت سارے تیر, ہر ان میں سے ہر ایک تیر اپنے اپنے ٹارگیٹ پہ جا کر صحیح طریقے سے لگے اپنے ہدف پر, تو وہ مصیبہ ہیں. جو چیز مجھے آ کر لگنی تھی, جو تجربہ مجھے ہونا تھا, جس چیز کا مجھے سامنا کرنا تھا, وہ بالکل صحیح ٹارگیٹ پر آئی ہے, اسی نے آنا تھا. اور یہ اصابہ عربی میں صرف برے کے لیے نہیں, اچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا, ہمارے اوپر تو کچھ آئے گا ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے کھاتے میں لکھا ہے, ہمارے خلاف نہیں لکھا. الا ما کتب اللہ علینا, لا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا, ہمارے لیے لکھا ہے. تو مصیبت کا لفظ اردو میں ہم برے کاموں کے لیے, جو بری چیز آپ کو آ کے لگ جائے اس کے لیے مصیبت, عربی میں مصیبہ اچھے اور برے دونوں کے لیے, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خیر. تو یہاں پر ان وَلَمَن صَبَرَ وَذَكَرَ وَغَفَر إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور. دیکھیں, آپ فرض کریں یہ ہوتا رہتا ہے, یہ لوگ قرآن کی کاپی کو جلا رہے ہیں, یا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں, یا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, رائٹ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, رائٹ. اور پھر ہمیں آتا ہے غصہ کہ اس کی کوئی جوابی کاروائی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اس پہ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک لیکچر بھی دیا تھا کہ ہم جس کس طرح اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اور پھر کس طرح ہم ایکچولی جانے بغیر بغیر صحیح علم کے ہم ان کا فائدہ کرا دیتے ہیں, کیونکہ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اوپر اٹینشن لائیں, اور ان کو اٹینشن باقی تو کوئی دیتا نہیں, کون دیتا ہے انہیں ساری اٹینشن, ہم دیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جا رہا ہے, ان کو شاعر کہا جا رہا ہے, انہیں کذاب کہا جا رہا ہے, اور قرآن کہتا ہے یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, جواب میں کیا کرو, اعرض عنہم, چھوڑ دو انہیں, تولا عنہم, پیٹ دکھاؤ انہیں, بار بار قرآن یہ کہہ رہا ہے نا. تو خیر, وہ الگ بات ہے. لیکن ایک بات یہاں پر جو سمجھنے کی اس کانٹیکسٹ میں ہے, وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار صبر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ریاکشن نہ دیں, یا تو اس لیے کہ اس ریاکشن کا ٹائم نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے کہ ابھی ریاکشن کی آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے. جو مکے میں صحابہ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں, اس وقت وہ جوابی کاروائی کر بھی نہیں سکتے تھے. وَلَمَن صَبَرَ, تو وہاں پر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, لقمان کی آیت مکے میں آئی ہے. لیکن ایک اور صبر کا امتحان ہے, وہ ذرا زیادہ مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی وہ ایک زمانے میں طاقتور تھا اور آپ کمزور تھے, لیکن ایک زمانہ آتا ہے کہ اب وہ کمزور ہو گیا ہے اور آپ طاقتور ہو گئے, اور اب وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ جب آپ کے سامنے ہے تو وہ جو پہلے کا کھاتا تھا وہ اب بیلنس کرنا ہے, آگے سے اس کو جواب دینا ہے. اس نے وہ 4 سال پہلے جو تھپڑ مارا تھا, اب آپ کا ٹائم آ گیا کہ میں بھی ذرا سکور برابر کروں. اس وقت اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اس وقت بدلہ نہ لینا, یہ بھی صبر کا امتحان ہے کہ نہیں؟ صبر کا بہت بڑا امتحان ہے. اور دیکھیں, اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور اس میں آپ کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے, صبر تو آپ کرو گے, لیکن دو چوائسز ہیں, یا صبر کرو گے یا رو گے, اس کے علاوہ کیا کر لو گے. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے اور پھر بھی آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں گے اور آپ معاف کریں گے, یہ کوئی چھوٹا کام ہے؟ نہ. وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ, اور جس نے صبر کیا اور ساتھ ہی معاف بھی کیا, یہ تو بہت ہی زیادہ ہمت والا کام ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ان آیات کا تعلق اصل میں بدلے سے ہے, بدلے کی حکمت اور بدلے کو سمجھنا قرآن میں. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو اور وہ اپنی مدد کرنے کے لیے جوابی کاروائی کرے, تو اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بائبل کا ایک محاورہ ہے, شاید آپ کو معلوم ہوگا, ٹرن دی ادر چیک, دوسرا گال دکھا دو. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف سے تھپڑ مارے تو کہیں یہ زیادہ لال ہو گیا, اس کو بھی فکس کر دیں, right? Turn the other cheek.
1: तो कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की है
0: और आप उसके जवाब में अपने हक के लिए खड़े हो जाते हो, अपनी मदद करते हो या उसको रिटेलिएट करते हो, तो क्या आप पर मुजम्मत होगी?
1: नहीं. फउलाइका मा काना अलैहिम मिन सबील. आप उनके ऐसे लोगों के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया जा सकता जो जुल्म किए जाने के बाद जवाब दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं. इन्नमस सबीलु अलल लजीना यज़्लिमून अन्नास. केस तो उनके खिलाफ हो जो ज्यादती करते हैं, केस तो उनके खिलाफ हो. तो फिर तीन आपके पास पॉसिबिलिटी, तीन इम्कान आ गए. अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ, तो तीन इख्तियार है मेरे पास. एक इख्तियार है, उसने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं उसको चार मारूंगा. लाजमन नहीं कहा कि माफ करो, लेकिन अगर माफ करने की इतनी हिम्मत है कि माफ कर सकते हो, तो उसका इनाम क्या है कि अल्लाह ताला माफ करेगा. और इन आयात में जब कहा ना वला मन सबर व गफरा فإن ذلك من عزم الأمور. إني آيات میں کہا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. جس نے معاف کر دیا اور پھر رشتے کو دوبارہ صحیح بنا دیا, اصلح, اصلاح کر لی. عام طور پر کوئی اچھا کام کرو تو اللہ اجر کا ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے, یا کہہ دیں گے اس کو جنات ملیں گی, اس کو باغ ملیں گے, اس کو گرہ میں دریا ملیں گے, اس کو جنت کے پھل ملیں گے. کسی اجر کا ذکر ہے یا کسی مغفرت کا ذکر ہے. یہاں پر اس ایک معاف کرنے کی کے عمل کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے کہ کہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ, یعنی بیان بھی نہیں کیا کیا اجر ہے. قرآن جو ہر چیز کو بیان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پورے مکمل پرفیکٹ بیان میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ انسانی زبان میں انسان اس اجر کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے گا. تو اس کے لیے تعبیر یہی صحیح ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ, فاجرہ علی اللہ. تو کبھی کبھار یہ بھی ہمیں ذہنیت ہمیں تیار کرنی چاہیے اپنے اندر کہ جو قرآن بات کر رہا ہے نا, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بات بیان کر کے سمجھاتے ہیں, اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بات بیان نہ کرنے سے بھی سمجھاتے ہیں. واضح کیے بغیر زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات. ٹیچر کا بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے نا, ٹیچر کبھی کبھی آپ کے سوال کا جواب نہیں دیتا, کیونکہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہو اس کا جواب بعد میں سمجھ آئے گا. اگر ابھی میں اس کا جواب دینا شروع کر دوں تو یہ والا درس بھی خراب ہو جائے گا اور اگلے 6 لیکچر بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو ڈپریشن ہو جائے گی. تو آپ کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا جانا. ہوتا ایسا کہ نہیں؟ جو صحیح ٹیچر ہوتا ہے نا وہ گوگل نہیں ہوتا, اس میں جو بھی انٹر کرو اس کا وہ جواب دینا شروع کر دے گا, ورنہ ساری تعلیم خراب ہو جائے گی. کبھی کبھی ٹیچر کو کہنا پڑتا ہے اس کا جواب ابھی نہیں, اس بارے میں میں تفاصیل نہیں دوں گا. تو قرآن آپ کی ہر بات کا جواب نہیں دیتا. اور آج کل میں نے نوٹس کیا ہے جو جس قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں, میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ جس قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے ذہنیت کیا ہے. تو لوگ اب کہتے ہیں قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے, قرآن میں وہ کیوں نہیں ہے, قرآن میں اس چیز کا جواب کیوں نہیں ہے, قرآن میں اس کی, کیونکہ ہم نے قرآن کو گوگل بنا دیا نا. اب تو گوگل میں تو میں جو بھی ڈالتا ہوں اس کا مجھے جواب مل جاتا ہے. اب قرآن میں ڈال رہا ہوں مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں مل رہا. قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے, اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ قرآن تعلیم ہے. اگر آپ کسی کلاس میں جاتے ہو, پی ایچ ڈی پروگرام میں جاتے ہو, کسی اعلیٰ تعلیم میں جاتے ہو, کلاس میں بیٹھتے ہو, اتنی مشکلوں سے آپ کو اس میں داخلہ ملا ہے, اتنا دنیا کا سب سے عظیم پروفیسر آپ کو پڑھا رہا ہے کوئی, اور پھر آپ کہو کہ اس نے آپ کو ٹیکسٹ بک پڑھایا, اور کہو اس ٹیکسٹ بک میں تو میرے فیوریٹ کھانوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے, ویکیشنز کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے. جو چیز آپ کے ذہن میں وہ اس کتاب میں ہونی ہے. آپ یہاں سیکھنے آئے ہو یا اپنی خواہشات پوری کرانے آئے ہو؟ تو یہ ذہنیت ہمیں بدلنی ہوگی قرآن کے بارے میں کہ ہم کس قسم کے سوالات قرآن کے لیے لاتے ہیں. اچھا خیر, یہ اس کے بعد میں آپ کو بریک دوں گا. یہ دماغ لڑانے والی تعبیر ہے, اور اس کے بارے میں میں نے جس طرح الحمدللہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا تھا نا کہ اگر اس طرح کہا ہوتا تو کیا کمی رہ جاتی, اس طرح کہا ہوتا تو کیا کمی رہ جاتی. میں جن کے کام سے میں بہت متاثر ہوں, کچھ علماء ہیں دنیا میں جنہوں نے قرآن کی بہت خدمت کی ہے تاریخ میں بھی اور آج بھی, اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت کرے, ان کے کام کو قبول کرے. ان میں سے ایک شخصیت ہیں ڈاکٹر فاضل صالح السامرائی. السامرائی سامراء سے ان کا تعلق ہے, عراق میں ہوتے ہیں, اور ان کے ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں ڈاکٹر مثنا, وہ میرے دوست بھی ہیں, وہ بھی عراق میں, وہ بھی ان سے بھی بات چیت میری ہوتی رہتی ہے. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں قرآن کے معجزے پر. میں ایک دو منٹ لوں گا ان کے بارے میں کچھ آپ کو بات بتانے کے لیے, کیونکہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے. ये थे इराक में, और इराक में जो बाथ पार्टी है ना, सियासी पार्टी 70s में 80s में इस तरह, वो लोग सारे थे कम्युनिस्ट और ज़्यादातर वो एथीस्ट भी थे। और इराक में एक तरफ तो इस्लाम था और दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सेकुलरिज्म था। और इस ज़माने में इनको, इनकी जब तालीम हुई है तो ये, इनका एक बहुत फ़लसफ़ी किस्म का दिमाग था, और ये इनको अरबी अदब से बहुत मोहब्बत थी। इस तरह लोग होते हैं जिनका दीनी मिजाज हो ना हो लेकिन उनको उर्दू अदब से मोहब्बत है, ठीक है। तो इसी तरह इनको अरबी अदब से, अपनी तारीख से, अपनी तुरास से बहुत मोहब्बत थी। इन्होंने यानी बहुत आला तालीम हासिल की अरबी अदब में, PhD वगैरह की, यहाँ तक कि ये बगदाद में तमाम स्कूल्स के जो अरबी एजुकेशन है उसके वो इंचार्ज थे, और PhD प्रोग्राम में अरबी भी पढ़ा रहे थे। अपने बारे में लिखते हैं कि मैं जवानी के दौर में, मेरे जहन में एक ख्याल आया, अजान हो रही है इराक में, और मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं क्यों जाऊँ नमाज पढ़ने, क्या मिलेगा मुझे अगर मैं इस मज़हब को कबूल करता हूँ, मानता हूँ। अभी मेरे पास नौजवानी है, आज़ादी है, इख्तियार है, और मैं अगर इस मज़हब को कबूल करता हूँ तो मैं अपनी आज़ादी छोड़ रहा हूँ, अपने वक्त को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर रहा, और अपने ऊपर कैदें डाल रहा हूँ। तो ये मैं अपने ऊपर ये बोझ क्यों डालूँ, क्या ज़रूरत है मुझे ये बात कबूल करने की, इससे मुझे क्या मिलेगा सिवाय और बोझ के, मुझे क्या मिलना है इससे। ये सवाल था इस शख्स के जहन में। इन्होंने जब ये जहनीत इनकी बढ़ी तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि अरबी तो पढ़ी, कुरान पढ़ने से इनकार कर दिया। शेर पढ़ना, तारीखी शेर और तहजीब के शेर, तमाम शेर, कुरान नहीं पढ़ना, ना ये मेरे लायक नहीं, इस तरह का एटीट्यूड मेरे लायक नहीं है ये। PhD प्रोग्राम में थे तो किसी ने इनको चैलेंज किया, एक तालिब इल्म था इनका, इन्होंने इनको चैलेंज किया, कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप कुरान पे तनकीद लिखते हैं, अदबी आपकी महारत है, आप अरबी के एक्सपर्ट हैं, आप ऐसा करें, अगर आपको इतना ही एतमाद है अपनी अरबियत पर, तो आप कुरान का मुताला करके कुरान पर बाकायदा क्रिटिसिज्म लिखें। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए 50s और 60s में खासकर मिस्र में कुरान पर बहुत सारी तनकीद भी लिखी गई थी सेकुलरिज्म के दिनों में। तो इन्होंने चैलेंज को कबूल किया कि मैं लिखूंगा जी। इन्होंने कुरान का बहुत गहराई से मुताला शुरू किया। पहली किताब शाया करते हैं, उसका नाम है अन्नबुवा अल-मुहम्मदिया मिन अश्शक्की इल-यकीन, मोहम्मद की नबूवत, मेरा सफ़र शक से यकीन की तरफ। कुरान पढ़ने से इस इंसान के अंदर एक नतीजा जो आया, ये इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। और उसके बाद इन्होंने, मेरा ख्याल है अब तक 25 या 30 किताबें लिखी हैं सिर्फ कुरान के मौजज़ात पर, लुगत की बुनियाद पे, सिर्फ लुगत की बुनियाद पे। बाद में इनका एक TV शो, अभी काफ़ी उम्र रसीदा है, जब वॉर हुई थी, जंग हुई थी इराक में, तो वहाँ से निकले थे, शारजा पहुँच गए थे, शारजा में कुछ लोगों ने इनको रिकग्नाइज़ किया कि ये कौन शख्सियत हैं, तो इनको एक TV शो भी करा दिया था, बड़ा खूबसूरत TV शो था, लमसात बयानिया अरबी में, तुम लोगों को जिनको अरबी समझ आती है, वॉच लमसात बयानिया फी नुसूस मिन तंज़ील, तो इनके YouTube पे उसके कुछ क्लिप्स वगैरह हैं। तो वो शो भी बड़ा मज़े का था, वो क्या था, इनके साथ एक मेज़बान बैठा हुआ है, ये बैठे हुए हैं, और इनसे जो है वो मेज़बान पूछता है कि जी सवाल आया है कि यहाँ पर समावात है, यहाँ समा है, ये क्यों है, जी एक सवाल है, यहाँ पर इस तरह है, यहाँ पर इस तरह है, ये क्यों है, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। तो वो एक एक का ना हर एपिसोड में वो जवाब देते, और कई साल इनका शो चला TV पर, और लुबनान से, इराक से, सऊदीया से, सूडान से, सोमालिया से, हर जगह से लोग कुरान के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। वो शो देखने का अपना अजीब मज़ा था कि कुरान के इश्क करने वाले कहाँ कहाँ हैं दुनिया में, और कैसे कैसे सवाल उनके जहन में आते हैं कुरान के बारे में, और वो सारे सवाल जमा हो रहे हैं, एक बड़ा खूबसूरत ज़खीरा बना। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि इनसे मेरी ज़ाती तो मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पर एक दो दफ़ा उनसे बात हुई है, लेकिन इनका एक एपिसोड था उसमें इनका मेज़बान उनसे पूछता है, वैसे तो बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं, आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी आयत है जिसने आपको बहुत गहरी सोच में डाल दिया, आप बताइए। उन्होंने पढ़ा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा और वो गम नहीं करेंगे। उन पर कोई खौफ नहीं होगा और वो गम नहीं करेंगे। तो वो जो मेज़बान था शो का, वो भी कहता है मत इश्काल फी हादा या सैयदी, इसमें क्या मुश्किल है सर? तो इतनी आसान सी बात है। तो वो कहते हैं कम इस्तग़रका, कितना वक्त लगा इस आयत पर आपको तामुलात करने में? कहते हैं इसमें मैं 2 साल से सोच रहा हूँ। इस आयत में वो बंदा 2 साल से सोच रहा है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। उन्होंने बातें तो बहुत सारी की, लेकिन उन बातों में से थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने आज रखूंगा इस आयत के बारे में, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, पहले इसका एक मुख्तसर सा तर्जुमा समझ लें उर्दू में, उन पर कोई खौफ नहीं होगा ना ही वो गम करेंगे। उन पर कोई खौफ नहीं होगा ना ही वो हैं जो गम करेंगे, ठीक है। पहली बात देख लें कि यहां पर खौफ का लफ्ज इस्म है और हुज़्न गम का लफ्ज फेल है। खौफ इस्म है और गम फेल है। इस्म और फेल की बात हम पहले कई दफा कर चुके हैं, अब आपको समझ आ गई होगी। खौफ क्या होता है, यानी इस्म क्या होता है? हमेशगी के लिए। और फेल क्या होता है? टेम्पररी होता है, आर्जी होता है ना। इंसान की तबीयत में देखें, सुबह उठता है, खौफ होता है देर तो नहीं हो रही। खाना खाता है, खौफ आता है पता नहीं ट्रैफिक होगी रास्ते में वापस जाते हुए कि नहीं। खौफ आता है बिल पे कर दिया था कि नहीं, सर्जरी सही से होगी कि नहीं, अपॉइंटमेंट मिलेगी कि नहीं, ये शादी होगी कि नहीं, प्रेगनेंसी कैसी जाएगी, डिलीवरी कैसी होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। खौफ छोटे और खौफ बड़े इंसान की ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा हैं। खौफ के बगैर हम चल नहीं सकते, असल में हम चल नहीं। छोटे खौफ और बड़े खौफ, खौफ हमारी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा है। लेकिन उदासी जो है वो कभी आती है कभी जाती है। कोई पुरानी चीज़ याद आ जाए तो उदासी हो जाती है, फिर उसका ख्याल चला जाए और फिर दोबारा दूसरी तरफ इंसान आगे मजीद चलना शुरू कर देता है। इस तरह समझ लें कि खौफ मुस्तकबिल के लिए होता है और जो उदासी है वो माजी के लिए होती है। खौफ का ताल्लुक आगे आने वाली चीज़ से है। जिस अभी एग्ज़ाम होने वाला है तो शागिर्द को क्या होता है? खौफ। और जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता जा रहा है खौफ बढ़ता जा रहा है। जब टीचर पेपर रख रहा है सामने वाले के डेस्क पे, है, है, फिर आपके डेस्क पे आता है। और जब पेपर ख़त्म हो जाए और आप क्लास से निकल रहे हो उस वक्त उदासी होती है। खुशी भी होती है हाँ। और रिजल्ट आने से पहले खौफ, रिजल्ट देखने के बाद उदासी। अब्बू को बताने से पहले खौफ, अब्बू की गालियां सुनने के बाद उदासी। मुस्तकबिल है खौफ और जो गुजर गया उसके लिए क्या है? उदासी। और माजी जो है वो कभी याद आता है कभी नहीं आता, वो हमेशा जहन में नहीं रहता, कभी कभी ख्याल आ जाता है। तो जो चीज़ मुस्तकिल है, जो हमेशा जहन में रहती है, वो है सामने आने वाली चीज़। तो खौफ के लिए इस्म का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब, इस्म का उसलूब, और हुज़्न के लिए फ़िल का उसलूब ज़्यादा मुनासिब है। फिर इसमें यह भी कि पहले क्या है? पहले खौफ है। किसी भी चीज़ के मामले में पहले क्या होता है? खौफ। अब वो वाकया गुजर जाए और वो हमारी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ हो तो फिर उसके बारे में क्या होता है? उदासी होती है। तो इसीलिए हुज़्न पहले नहीं है, खौफ पहले। ये नहीं कहा ला हुम यहज़नून वला खौफ़ुन अलैहिम, ना ना ना, एक नेचुरल सीक्वेंस है, ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं।
2: सब्सक्राइब नाउ टू द बगीना यूट्यूब चैनल टू वॉच द रेस्ट ऑफ दिस सीरीज एंड मोर ग्रेट कंटेंट फ्रॉम उस्ताद नुमान अली खान। कमिंग अप नेक्स्ट टाइम ऑन आखिरी मौजा।
1: तो एक जबर से भी और एक हल्की सी जबर और एक पेश से भी, तनवीन से भी, कुरान के फहम में कितना फ़र्क आ जाता है। और ये चीज़ें क्योंकि हम तर्जुमे में कैप्चर नहीं करते ना, तो उससे भी मेरे नज़दीक लोग तर्जुमा, आसान तर्जुमा पढ़ते हैं, समझते हैं चले अब कुरान समझ आ गया, तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी आ जाती हैं। क्योंकि जो चीज़ें बारीक तरीके से कुरान ने कही हैं, ज़बान का इख्तियार अल्लाह ने एक ख़ास मकसद के लिए किया था। ये ज़बान, अरबी ज़बान बहुत साइंटिफिक है, इसमें एक एक बारीक नाजुक सी प्रिसिजन है, और इस तरह की बारीक प्रिसिजन जो है वो और ज़बानों में नहीं है इस तरह से।
3: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर FM. इंस्पायर FM. इंस्पायर 105.1 FM.
4: Back to School Tips on Inspire FM. For going back to school, get your intention straight. The Prophet Muhammad ﷺ said in a Bukhari hadith, the reward of deeds depends upon the intentions, and every person will get the reward according to what he intended. So understand what you're going to school for. Tune in to Inspire FM for more back to school tips.
5: Have you ever asked yourself what you want to become? If you are unsure what to do after school, Barnfield College will help you. Whether you want to learn a trade or go to university, you will find a course that transforms your ambitions into a career. Visit our campus from GCSE Results Day to begin your journey. With our support network and employer connections, Barnfield will set you on the path to becoming you. Find out more at barnfield.ac.uk. Barnfield College. Get September ready.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
8: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.

0: तो एक है जज्बात और एक है हकीकत। हकीकत में उस पर कोई खौफ करने वाली चीज़ है। अजीब कुरान की ताबीर है, अहले ईमान के बारे में कहा, यखाफूना यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार, उस दिन वो खौफ करेंगे, उस दिन का खौफ करते हैं। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हम अपने रब से एक बहुत ही उदास करने वाले दिन का खौफ करते हैं। क़यामत के दिन के बारे में क्या अहले ईमान खौफ का जज्बा रखते हैं? हाँ, बल्कि इसका भी इनकार नहीं किया जा रहा कि उस दिन जब क़यामत शुरू होगी तो अहले ईमान भी खौफ ज़दा होंगे, खौफ फील तो करेंगे, खौफ का एहसास तो होगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से इस आयत में तसल्ली है, खौफ तो तुम फील करोगे लेकिन हकीकत में तुम्हारे ऊपर खौफ नहीं होगा, यानी तुम किसी वाकई हकीकी खतरे में नहीं होगे। सुभानअल्लाह, जैसे बच्चा खिलौने को देख के डर तो गया लेकिन हकीकत में उस पर खौफ नहीं है। ला खौफुन अलैहिम, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, ला खौफुन अलैहिम। अच्छा, आगे ला खौफुन अलैहिम वला हुज़्नुन अलैहिम, अगर ये कहा होता ना उन पर खौफ होगा और ना उन पर उदासी होगी, अगर उसी तरह का उसलूब दोनों दफा इस्तेमाल कर लिया होता, एक ही जैसी ताबीर इस्तेमाल कर ली होती, ला खौफुन अलैहिम वला हुज़्नुन अलैहिम या ला खौफुन अलैहिम वला हुज़्न, क्या फर्क पड़ जाता? इस बात का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूँ उस पर उदासी नहीं है, किसी को जेल में डाला जा रहा है और कहूँ तुम्हारे लिए कोई रो नहीं रहा, तुम्हारे ऊपर किसी को उदासी नहीं है, वो कोई रोए ना रोए जेल तो वो फिर भी जा रहा है, इसका इस कलाम का कोई फायदा ना होता, इसमें कोई तासीर ना होती। फिर ला हुम यहज़नून ला, ये तो मैंने पहले बता दिया तरतीब के बारे में। अच्छा, ये समझ लें अब, ला यहज़नून वो गम नहीं करेंगे, ला लेकिन कुरान ने ला यहज़नून नहीं कहा, ला हुम यहज़नून। मैंने क्या लिखा यहाँ? वो है जो गम नहीं करेंगे। इसको ज़रा एक मिनट लगेगा समझाने में, मुझे मिसाल देता हूँ दोबारा आपको। अगर मैं कहूँ कि बात ना करें, कोई बात कर रहे हैं, मैं कहूँ बात ना करें, और वो जवाब में कहें मैं थोड़ी हूँ जो बात कर रही हूँ, मैं थोड़ी हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो बात कर रही हूँ, किस बात की तरफ इशारा है? ये बात कर रही। अगर वो कहे मैं बात नहीं कर रही तो अपने बारे में इनकार है, और अगर कहे मैं वो थोड़ी हूँ जो बात कर रही हूँ, तो ना सिर्फ अपना इनकार है लेकिन दूसरे की तरफ इशारा भी है। समझ में आ गई बात? ये जो हम का इजाफा है ना, इससे सिर्फ अपना इनकार नहीं होता, किसी दूसरे की तरफ इशारा होता है, किसी दूसरे की तरफ इशारा। अगर कहें ला यहज़नून वो गम नहीं करते, ला हुम यहज़नून वो थोड़ी हैं जो गम करते हैं, वो थोड़ी हैं जो गम करेंगे, यानी यहाँ पर ना सिर्फ अहले ईमान के गम की नफ़ी की गई, किसी और के गम की तरफ इशारा भी कर दिया। किसकी तरफ? अहले कुफर की तरफ, उनके गम की तरफ इशारा भी हो गया। ये असल में ख़तरे में नहीं है, इन पर असल में कोई ख़तरा नहीं होगा, ला खौफ़ुन अलैहिम, और ये थोड़ी हैं जो गम करेंगे बल्कि और होंगे जो गम करेंगे। ला हुम यहज़नून ला अलैहिम खौफ, अगर ये कहा होता ला अलैहिम खौफ, जिस तरह कहा है ला हुम यहज़नून, हुम पहले आ गया ना, तो अगर ये कहा होता ला अलैहिम खौफ, ये थोड़ी है जिन पर खतरा होगा, इन पर खौफ होगा, ये थोड़ी है जिन पर खौफ होगा। जिस तरह अभी मैंने पहले कहा था किसी और की तरफ इशारा, तो अगर इस तरह कहा होता शुरू में तो इशारा होता इन पर थोड़ी खौफ होगा, किसी और पर खौफ होगा, वो बात भी गलत हो जाती, क्योंकि जो भी और ख़तरे में है उस पर खौफ कौन करेगा, किसको फिक्र होगी काफिर की कि वो उस पर खौफ करे, जिसी तो वो बात की तुक ना बनती। अच्छा चलें, ये थोड़ी सी बातें हो गई ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून पे। एक आखिरी बात इसमें मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि जो नफ़ी होती है ना अरबी में ला के साथ कभी आप देखोगे कि उसमें तनवीन आती है खौफ़ुन, और कभी कभी ज़बर आती है, جیسے لا الہ الا اللہ, ہم یہ نہیں کہتے لا الہن الا اللہ, ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا اکراہن فی الدین یا لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین, لا خلاق لہم فی الآخرہ, ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار لا کے بعد تنوین آتی ہے, لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. ان دونوں میں بھی ایک باریک سا فرق ہے. ایک ہوتا ہے بالکل ہرگز کبھی بھی نہیں, اور ایک ہوتا ہے بالعموم نہیں, بالعموم نہیں. ایک ہے بالکل ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ بالکل ہرگز ہو ہی نہیں سکتا والا ہوتا ہے نا, تو اس میں آتی ہے زبر, اس کو کہتے ہیں لا النافیہ للجنس. جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس کا معنی یہ بھی ہے کہ الہ ہونے کا کوئی امکان ہرگز ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. لا اکراہ فی الدین, یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا, بالکل امکان نہیں ہے. وہ کیسے, یہ بالکل امکان والی بات کہاں سے نکلتی ہے, اس زبر سے. اور اگر آپ اس پہ تنوین ڈال دیں, تنوین ڈال دیں, تو پھر اس میں تھوڑا سا امکان رہ جاتا ہے. تو لا خوفا میں کوئی امکان نہ رہے, لا خوف میں تھوڑا سا امکان رہ جاتا ہے. اب دیکھنا یہ آیت سنتے ہیں, قرآن کی ایک بڑی عظیم آیت ہے. لا بیع فیہ, قیامت کے دن اس دن کوئی فروخت نہیں ہوگی, کوئی بیع نہیں ہوگی. ولا خلۃ, اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی. ولا شفاعت, اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی. تین کا انکار ہے قیامت کے دن, بیع, خلۃ, شفاعت. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت. زبر سنی کہ تنوین سنی؟ تنوین کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کوئی بیع نہیں ہوگی. موسلی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے تو خرید لیا اہل ایمان سے ان کے اموال اور ان کے نفس جنت کے عوض. خرید و فروخت کا ذکر قرآن میں بھی ہے. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به, تم خوشخبر ہو جاؤ اس فروخت کے معاملے میں جو ابھی تم نے مکمل کی ہے. تو یہ بیع تو ہے لیکن اکثریت کے لیے وہ بیع نہیں ہے. اچھا, پھر کہا لا خلۃ, اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی, تھوڑی سی ہوگی. انا خلنا اولیاء اللہ, اللہ تعالیٰ کے دوست جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لے گا, ان کا تھوڑا سا امکان رہ گیا. اور بڑی پیاری بات, ولا شفاعت, اس دن شفاعت نہیں ہوگی. کچھ ہوگی, کچھ تو ہوگی, وہ ہمارے نبی کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک زبر سے بھی, اور ایک ہلکی سی زبر اور ایک پیش سے بھی, تنوین سے بھی, قرآن کے فہم میں کتنا فرق آ جاتا ہے. اور یہ چیزیں کیونکہ ہم ترجمے میں کیپچر نہیں کرتے نا, تو اس سے بھی میرے نزدیک لوگ ترجمہ, آسان ترجمہ پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں چلے اب قرآن سمجھ آ گیا, تو اس میں بہت ساری کنفیوژنز بھی آ جاتی ہیں. کیونکہ جو چیزیں باریک طریقے سے قرآن نے کہی ہیں, زبان کا اختیار اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے کیا تھا. یہ زبان, عربی زبان بہت سائنٹیفک ہے, اس میں ایک باریک نازک سی پریسیجن ہے, اور اس طرح کی باریک پریسیجن جو ہے وہ اور زبانوں میں نہیں ہے اس طرح سے. مجھے الحمدللہ اور زبانیں سیکھنے کا موقع ملا ہے, میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کسی بھی زبان میں جو عربی زبان میں ہے, جو نزاکت عربی زبان میں ہے, جو دقت عربی زبان میں ہے. تو اس لیے ترجمہ اچھی چیز ہے ایک سطحی لیول پر بات سمجھنے کے لیے, لیکن قرآن کا جو اصل معجزہ ہے نا, اور جو اس کا باریک کلام ہے, اس کو سمجھنے کے لیے عربی کی اہمیت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ سب کو نیت کرنی چاہیے کہ شروع کہیں سے بھی کریں, آہستہ آہستہ بھی کریں, لیکن انشاءاللہ عربی کے طالب علم ہم سب کو بننا چاہیے کسی نہ کسی حد تک. اللہ تعالیٰ وہ راستے کھولتا رہتا ہے. اگر آپ کی نیت ہے کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کے کلام کو بہتر سمجھنا ہے, تو آپ چاہے 70 سال کے ہوں, چاہے 90 سال کے ہوں, چاہے 7 سال کے ہوں, عربی آپ کے لیے اللہ آسان کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کم عمری میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس کو ریکارڈ کیا ہے. الذی خلقنی فہو یہدینی والذی ہو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، جس نے مجھے بنایا اور وہی ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر حیات دے گا۔ ان آیات میں تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کرنے والی، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، ہر فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ نوٹ کریں، بنایا، ہدایت دی، کھلایا، پلایا، شفا دی، موت دی، حیات دی، ایک فعل ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے۔ اذا مرضت، جب میں بیمار ہو جاؤں، جب میں بیمار ہو جاؤں، یعنی کہا جب مجھے بیمار کیا تو مجھے شفا دے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ایک اسلوب کلام میں ایک ادب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرض کو ان کی نسبت مرض سے نہیں کی، اپنے اوپر کر لی، میں بیمار ہو جاتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي۔ دوسری چیز یہاں نوٹ کریں دوبارہ، جو افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ کیا ہیں؟ بنایا، ہدایت دی، کھلایا پلایا، شفا دی، موت دی، زندگی دی، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں، اور ان میں سے بہت سارے افعال ایسے ہیں جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے نا تو اس کا ان چیزوں پر ایمان ہوتا ہے کہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بنانے والا تو خدا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کو یاد رکھنے کی۔ اللہ نے مجھے بنایا، یہ معلومات آپ کے لیے، یہ بات معلوم ہونا میرے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا روز یاد رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ کو اس بات کو خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ آپ کے ذہن کے پیچھے رہتی ہے، بیک گراؤنڈ میں رہتی ہے، رہتی تو ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں رہتی ہے۔ لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے افعال ایسے ہیں جس کا اصل میں ہمارے ایمان پر روز بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور وہ ہیں ہدایت، کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے، یعنی میں روز اللہ سے ہدایت طلب کر رہا ہوں، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ اسی طرح مجھے یاد رہے ہر روز کہ جو میں رزق میرے پاس آ رہا ہے وہ میری وجہ سے نہیں آ رہا، وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی میرا نقصان نہیں کر سکتا جو اللہ نہیں کرنے دے گا، میرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا جو اللہ نہیں، جو میرا فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ نہ چاہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا جو اللہ نہ چاہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جو ہوا کا لفظ ہے نا، وہ ان چیزوں کے لیے آیا ہے جو روز ہمیں آسانی سے بھول جاتی ہیں، جو بڑی بڑی باتیں خدا کے بارے میں ہیں جو سب مانتے ہیں، بنانے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، وہاں کہا ہے خلقنی، یمیتنی، یحیینی، لیکن ہدایت کے بارے میں یہ نہیں کہا یہدینی، کہا فہوا، وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ اور میں نے پچھلے سیشن میں آپ سے کہا تھا نا کہ الاثبات علی غیر الفاعل، اگر میں کہوں میں تھوڑی ہوں جو بات کر رہی تھی، کس کی طرف اشارہ ہے؟ کسی اور کی طرف۔ اگر کہیں نا وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے، اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کوئی اور تھوڑی، یعنی ہمیشہ کوئی نہ کوئی اور آپ کو ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، اور آپ کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے وہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے، کوئی اور تھوڑی۔ اور اسی طرح ہوا یطعمونی و یسقینی، وہی تو ہے جو کھلاتا ہے، یعنی آپ کو کبھی لگے کہ آپ اگر حق بات کر دو گے تو آپ کی جاب چلی جائے گی، آپ صحیح بات کرو گے تو بزنس میں نقصان ہو جائے گا، اگر میں ان کی مرضی کے خلاف یا ان کا موڈ خراب ہو گیا تو پھر میری تو شامت آ جائے گی، تو کیا بات بھول جاتا ہے انسان کہ کھلانے والا میرا باس نہیں ہے، کھلانے والا یہ پروفیسر نہیں ہے، کھلانے والے یہ نہیں ہے، اصل میں کھلانے والا اور پلانے والا میرا رب ہے۔ تو وہاں مزید اہتمام کیا، وہی تو ہے جو کھلاتا پلاتا ہے، الذی ہوا یطعمونی و یسقینی۔ تو ان چھوٹی چھوٹی ضمائر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سے افعال پر خاص زور دیا جا رہا ہے اس تمام لسٹ میں، ٹھیک ہے۔ اوکے، ایزی ایگزامپل، اوف، یہ تھوڑی ڈرونی آیت ہے۔
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: لیکن اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن میں میرے کم مطالعے کے حساب سے قرآن میں عذاب کی کم سے کم سے کم شکل یہ آیت ہے. اس سے کم عذاب کی کوئی تعبیر مجھے نہیں ملتی قرآن میں, شاید ہو مجھے میرے علم میں نہیں ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ, اس سے کم تو ممکن نہیں ہے. اور یہ جہنم کے اندر بھی نہیں, ابھی جہنم سے باہر کی بات ہے. یعنی اس سے کم تعبیر میرے نزدیک ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک سین بنایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا, جس طرح کہتے ہیں نا خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو وقت کا بھی تعلق عذاب سے ہوتا ہے. لیکن اس آیت میں کتنا وقت گزر رہا ہے, نہ ہونے کے برابر.
2: Hadith 32. Narrated Abu Hurairah, the Prophet, peace and blessings be upon him, said, "Religion is very easy, and whoever overburdens himself in his religion will not be able to continue in that way. So you should not be extremists, but try to be near to perfection and receive the good tidings that you will be rewarded and gain strength by worshipping in the mornings, the afternoons, and during the last hours of the nights." Hadith 33. Narrated Al-Bara bin Azib, when the Prophet, peace and blessings be upon him, came to Medina, he stayed first with his grandfathers or maternal uncles from Ansar. He offered his prayers facing Baitul Maqdis, Jerusalem, for 16 or 17 months, but he wished that he could pray facing the Kaaba, at Makkah. The first prayer which he offered facing the Kaaba was the Usr prayer in the company of some people. Then one of those who had offered that prayer with him came out and passed by some people in a mosque who were bowing during their prayers, facing Jerusalem. He said, addressing them, "By Allah, I testify that I have prayed with Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, facing Makkah, Kaaba." Hearing that, those people changed their direction towards the Kaaba immediately. Jews and the people of the scriptures used to be pleased to see the Prophet, peace and blessings be upon him, facing Jerusalem in prayers, but when he changed his direction towards the Kaaba, during the prayers, they disapproved of it. Al-Bara added, "Before we changed our direction towards the Kaaba, Makkah, in prayers, some Muslims had died or had been killed and we did not know what to say about them, regarding their prayers. Allah then revealed, and Allah would never make your faith, prayers, to be lost, that is, the prayers of those Muslims were valid." Surah 2, Ayah 143. Hadith 34. Narrated Abu Sa'id al-Khudri, Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, "If a person embraces Islam sincerely, then Allah shall forgive all his past sins, and after that starts the settlement of accounts, the reward of his good deeds will be 10 times to 700 times for each good deed, and one evil deed will be recorded as it is, unless Allah forgives it." Hadith 35. Narrated Abu Hurairah, Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, "If any one of you improves, follows strictly, his Islamic religion, then his good deeds will be rewarded 10 times to 700 times for each good deed and a bad deed will be recorded as it is." Hadith 36. Narrated Aisha, once the Prophet, peace and blessings be upon him, came while a woman was sitting with me. He said, "Who is she?" I replied, "She is so and so," and told him about her, excessive, praying. He said disapprovingly, "Do good deeds which is within your capacity, without being overtaxed, as Allah does not get tired of giving rewards, but, surely, you will get tired, and the best deed, act of worship, in the sight of Allah is that which is done regularly." Hadith 37. Narrated Anas, the Prophet, peace and blessings be upon him, said, "Whoever said, 'None has the right to be worshipped but Allah,' and has in his heart good, faith, equal to the weight of a barley grain will be taken out of hell. And whoever said, 'None has the right to be worshipped but Allah,' and has in his heart good, faith, equal to the weight of a wheat grain will be taken out of hell." And whoever said, none has the right to be worshipped but Allah, and has in his heart good, faith, equal to the weight of an atom will be taken out of hell. Hadith 38. Narrated Umar bin al-Khattab, once a Jew said to me, O the chief of believers! There is a verse in your holy book which is read by all of you, Muslims, and had it been revealed to us, we would have taken that day, on which it was revealed, as a day of celebration. Umar bin al-Khattab asked, which is that verse? The Jew replied, this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Surah 5, Ayah 3. Umar replied, no doubt, we know when and where this verse was revealed to the Prophet. It was Friday and the Prophet, peace and blessings be upon him, was standing at Arafat, that is, the day of Hajj. Hadith 39. Narrated Talha bin Ubaidullah, a man from Najd with unkempt hair came to Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, and we heard his loud voice but could not understand what he was saying, till he came near and then we came to know that he was asking about Islam. Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, you have to offer prayers perfectly 5 times in a day and night, 24 hours. The man asked, is there any more praying? Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, replied, no, but if you want to offer the nawafil prayers, you can. Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, further said to him, you have to observe fasts during the month of Ramadan. The man asked, is there any more fasting? Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, replied, no, but if you want to observe the nawafil fasts, you can. Then Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, further said to him, you have to pay the zakat, obligatory charity. The man asked, is there anything other than the zakat for me to pay? Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, replied, no, unless you want to give alms of your own. And then that man retreated saying, by Allah, I will neither do less nor more than this. Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, if what he said is true, then he will be successful, that is, he will be granted paradise.
3: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: Did you know neutron stars are incredibly dense and that a single teaspoon of their material would weigh about 6 billion tons? roughly the weight of a literal mountain on Earth.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
10: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
11: But
10: it costs £10 per inch.
11: And that's too expensive.
10: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
11: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
12: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
14: Assalamu alaikum, a very warm welcome to everyone. Aap sun rahe hain Inspire FM 105.1 par Family Matters Show. Main hoon aapki host Afshan Irfan aur mere saath hain Hajra Khan.
15: We are so happy you have joined us once again. Whether you are listening from your kitchen while making chai, driving to your work or any household chores, or simply relaxing. वेलकम, खुश आमदीद, जी आया नू, भली करें आए, बखैर राखले, अहलन व सहलन. और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पहली काविश को अप्रिशिएट करने का और उसको उसका दिल से स्वागत करने का. यू कैन डेफिनेटली कॉल अस और सेंड अस अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन आवर हॉटलाइन, दैट इज 07779481822, या यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 01582481822. Follow our Insta handle, which is Inspire FM Luton, or log on to our website, inspirefm.org, where you can listen to our live and previously recorded shows and enjoy much more.
14: बिल्कुल सही, और हमें बहुत खुशी है कि एक दफा फिर हम आपके सामने Inspire FM का एक नया प्रोग्राम, एक नई चीज लेकर आए हैं. अच्छा हाजरा, पिछली दफा हम लोग बात कर रहे थे फैमिली मैटर्स शो पे, ठीक है, क्या आप थोड़ा सा हमें इसका दोबारा से रिकैप दे सकती हैं?
15: श्योर, व्हाई नॉट. लास्ट वीक वी टॉक्ड अबाउट समथिंग रियली ब्यूटीफुल. We discovered that family isn't defined by one shape. Some families are large, some families are small, some are loud, some are quiet, some are built by blood, other families are chosen. And every single one deserves love, dignity and respect.
14: बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल कहा सब कुछ. फैमिली होती ही एक प्यार, मोहब्बत, एक बॉन्ड वाली चीज, एक बॉन्ड वाली जगह जहाँ पे आप अपनी हर चीज बयान कर सकते हैं, हर बात कर सकते हैं, हर मशवरा कर सकते हैं, हर किस्म की एडवाइस भी ले सकते हैं. और इसमें हमने डिस्कशन की थी, कुछ फैमिलीज को हमने डिस्कस किया था.
15: एग्जैक्टली,
14: कुछ टाइप्स ऑफ फैमिलीज डिस्कस की थी, जिसमें एक न्यूक्लियर फैमिली थी, एक सिंपल फैमिली थी, एक सिंगल फैमिली थी, एक मुख्तलिफ फैमिलीज थी. आज हम जिस चीज पर बात करेंगे वो इन तमाम फैमिलीज को बॉन्ड पे काउंट करती है, यानी वो चीज जो इन सब तमाम की तमाम फैमिलीज को इकट्ठा रखती है. और वो क्या चीज है हाजरा?
15: वो है कम्युनिकेशन, हमारा आज का टॉपिक. एंड बिफोर वी प्रोसीड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो वन थिंग, दैट दिस टॉपिक कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी कवर्ड इन टू पार्ट्स. दिस इज पार्ट वन, एंड नेक्स्ट वीक यू आर गोइंग टू लिसन टू पार्ट टू ऑफ कम्युनिकेशन एपिसोड. द रीजन इज दैट कम्युनिकेशन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, and it is something that holds every family member together. Just imagine a house which has roofs, which has walls, but no windows. No windows or no doors. How are you going to enter inside the house, or how are you going to look outside the house? It is the windows and the doors. That is the communication within the family that makes you communicate with each one of the family members and take care of them.
14: बिल्कुल सही कहा. किसी भी फैमिली का, किसी भी खानदान का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है वो कम्युनिकेशन होता है. जब तक हम बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, हम एक दूसरे को बताएंगे नहीं, तो हम दूसरे से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी बात को समझेगा.
15: एग्जैक्टली. कम्युनिकेशन, इस पे मुझे एक बहुत फनी लाइन याद आ गई कि कम्युनिकेशन इज जस्ट लाइक टूथपेस्ट. वंस इट्स स्क्वीज्ड आउट यू कांट पुट इट बैक. आपके मुंह से निकले हुए कोई भी ऐसे अल्फाज जो कि किसी को दुख पहुंचा दें, किसी को तकलीफ पहुंचा दें, यू कांट टेक देम बैक. तो जनरली कभी भी बात करते हुए आप उसको दो दफा, तीन दफा जरूर सोचें. एंड स्पेशली विद योर लव्ड वंस, विद योर फैमिली मेंबर्स, विद योर एक्सटेंडेड फैमिली, विद योर एल्डर्स, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक.
14: तो इसका मतलब हुआ कि जैसे आजकल या बहुत सारी फैमिलीज में लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन होती है, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. लोग इसको झगड़ा भी कहते हैं, लोग इसको गपशप भी कहते हैं, बातचीत भी कहते हैं. तो आपका कहने का मतलब है कि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें भी हमारी बाउंड्रीज होनी चाहिए, रिस्पेक्ट की बाउंड्री होनी चाहिए. हमारी बड़ों के लिए एक अलग होना है, रिस्पेक्ट होता है, जबकि बच्चों के लिए प्यार मोहब्बत होती है. यानी कम्युनिकेशन में भी ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं.
15: बिल्कुल. आप जब आप अपने किसी एल्डर से बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर एल्डर, यू हैव टू मेंटेन द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेशन मे बी वेरी फ्रैंक, वेरी इजी गोइंग, बट द एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट शुड बी देयर ऑल द टाइम्स.
14: बिल्कुल. और हर किसी से कम्युनिकेशन करने की लेवल्स भी अलग होते हैं. दोस्तों के साथ हम गपशप भी लगाते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते हैं, हमारी नोकझोंक भी चलती रहती है थोड़ी सी. लेकिन जब हम अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं, या किसी मेहमान के साथ करते हैं, तो हमारा एक रिस्पेक्ट का उसमें रहता है, एस्पेक्ट रहता है,
15: एलिमेंट आ जाता है.
14: बिल्कुल सही का. और जब हम बच्चों से करते हैं तो फिर हमें वो कम्युनिकेशन एक प्यार मोहब्बत और समझाने वाली उस पे चली जाती है. आप उनको गाइडेंस वाली कम्युनिकेशन उसे कर सकते हैं. लेकिन इन सब चीजों के दरमियान देखा जाए तो मेन थिंग इज कम्युनिकेशन. मेन एस्पेक्ट इज कम्युनिकेशन.
15: एग्जैक्टली. एज आई सेड अर्लियर दैट कम्युनिकेशन इज द विंडोज एंड इट इज द डोर्स विद इन योर फैमिली, जिसके साथ आप किसी के भी दिल में, किसी के भी इमोशंस में आप झांक सकते हैं, आप उतर सकते हैं. बिकॉज यू केयर फॉर देम. आप उनका ख्याल रखते हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, और आप ये आप जानना चाहते हैं कि उनके इस वक्त के इमोशंस क्या हैं, ताकि उनको दुख और तकलीफ ना पहुंचे. इफ़ दे आर गोइंग थ्रू सर्टन टाइम, इफ़ दे आर गोइंग थ्रू एनी हार्डशिप, यू वॉन्ट टू बी देयर सपोर्ट. और ये उसी तरह उसी वक्त मुमकिन है जब आप कम्युनिकेशन के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ ओपन करके रखेंगे अपने लव्ड वंस के साथ.
14: अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है, अब किसी भी फैमिली में, किसी भी घर में कम्युनिकेशन का जो एक होता है, जारी बात है, हर कोई सुबह फारिग होता है, कोई शाम को फारिग होता है, कोई किस वक्त आता है, कोई स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, काम, तो आपका क्या ख्याल है कम्युनिकेशन का बेस्ट टाइम कहाँ होता है?
15: देखिए, व्हेन यू बिल्ड द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन इन योर फैमिली, जब आप उसको फाउंडेशन से ही एक बिल्डिंग अच्छी बनाएंगे, तो आपको फिर टाइम नहीं देखना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट दिस टाइम और वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट ऑन दैट टाइम. वो फिर आपकी ओवरऑल एक बॉन्डिंग, एक कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होगा कि वेन एवर यू आर गोइंग टू गो टू समबडी के आई नीड यू राइट नाउ, तो वो दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यू एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देम. इफ दे से कि अच्छा अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, लेट्स टॉक आफ्टर 5 मिनट्स और लाइक एन आवर और सो, तो बोथ पार्टीज आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर.
14: तो आपके ख्याल में क्या है जब आप ये कम्युनिकेशन कहती है, लेकिन जिस तरह अगर बहुत बिजी है तो आप क्या समझती हैं एक घर का जो डाइनिंग टेबल होता है वो कम्युनिकेशन के लिए कैसा स्पॉट है?
15: बेस्ट, क्योंकि दैट इज इफ यू आर हैविंग अ मील दैट इज इम्पोर्टेंट, कि अगर आप एक डे का मील जो है वो साथ में ले रहे हैं तो दैट इज योर डाइनिंग टेबल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एट दैट पार्ट ऑफ द डे, कि आप सब मिलके बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यू आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर फ्रेंकली.
14: तो यानी कि जो डाइनिंग टेबल है वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है ना. अगर टेबल डाइनिंग टेबल गोल है तो हम उस पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. अगर वो रेक्टेंगल है तो हम उसके ऊपर जो है तो क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल मेज कॉन्फ्रेंस विद डिनर के साथ, विद लंच के साथ. और मेरे ख्याल में लंच और डिनर का जो टाइम होता है वो जब सारे बैठे होते हैं तो उसमें आप कम्युनिकेशन जो होती, जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो बहुत आप कह लें स्ट्रांग होती है, क्योंकि सारी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है.
15: और दैट इज वन टाइम स्पेशली डिनर के बाद, इट इज अ टाइम व्हेन एवरीवन इज रिटायरिंग फ्रॉम देयर डे रूटीन, और उसके बाद दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक टास्क टू डू अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग और रीडिंग अ बुक और डूइंग सम हॉबी और समथिंग लाइक दैट. तो वो एक ऐसा चिल टाइम होता है कि आप you don't have anything on your mind ke maine bhi iske baad ye karna hai ya I have these things lined up for my rest of the day. So you sit with a free mind and you talk, you reflect on the events throughout the day, and you ask your children or your spouse or your parents what happened during the day, what made you laugh, what made you sad, what made you think from a different perspective and things like that.
14: बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लंच या डिनर का टाइम होता है उस पर अक्सर हम लोग भी अपने घरों में जब सारे दिन के बाद सारे काम अंजाम देने के बाद बैठते हैं तो बच्चों से पहला सवाल मेरा यही होता है आमतौर पे कि हाउ वाज योर डे. नाउ ये कहने का बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ वाज योर डे, बट इट कवर्स एवरीथिंग
15: एंड इट लीव्स अ वेरी बिग इंपैक्ट ऑन द पर्सन यू आर आस्किंग फ्रॉम.
14: बिल्कुल, बच्चों से पूछते हैं कि हाउ वाज योर डे तो they feel noted, they're just not existing, they are being heard, they are being noted,
15: very and important.
14: Very important.
15: Yes.
14: और उसमें फिर ये होता है कि they know that this is the time जहाँ पे हम अपने problems भी बता सकते हैं, हम अपनी खुशी भी शेयर कर सकते हैं, हम अपने जो है कोई भी ऐसी चीज है जो कि जिसके लिए हमें guidance चाहिए तो हम share कर सकते हैं. And that is the main question of the day, of the whole day. कि जो आप आस्क करते हो अपने बच्चों से कि हाउ वाज योर डे, या एज अ वाइफ यू आस्क योर हस्बैंड ओके डियर हाउ वाज योर डे.
15: एग्जैक्टली, बिकॉज इफ यू आर हैविंग अ बिजी डे, इफ यू आर हैविंग अ मे बी अ रफ डे, तो योर स्पाउस इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग. दे आर अर्निंग लाइवलीहुड, दे आर having their own tough routine, they are answerable to their line managers, bosses, they have this aspect of providing livelihood to their family the whole time on their mind. So they come back home with a cognitive burden ke abhi ye cheeze bhi karni hai, next few days mein ye cheeze karni hai. For example, August is going to end, and every parent is going to go to the market to buy new clothes, new uniform, new shoes for the new academic year. So these are the fathers who are making up for these, or in some cases mothers are also responsible for paying for some of the things.
14: बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं. वो एक टाइम होता है जिसमें आप कम्युनिकेट भी करते हैं और आपकी लिस्ट भी बनती है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, हॉलीडे लिस्ट बनती है, ग्रोसरी लिस्ट बनती है, शॉपिंग लिस्ट बनती है. वो जो टाइम होता है, इट्स आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम,
15: मोस्ट प्रोडक्टिव आई वुड से.
14: या डेफिनेटली बहुत प्रोडक्टिव होता है. और बच्चों की तो जो एक लंबी सी लिस्ट होती है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी चाहिए, उस वक्त फिर आपको उनको समझाने का, बताने का, उनके साथ डिस्कस करने का वो बहुत बेहतरीन टाइम होता है. क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि बच्चा आता है, अभी मुझे ये चाहिए, एट दैट मोमेंट वी आर जस्ट बिजी, हम कहते हैं अच्छा ठीक है देख लेंगे,
15: we'll see it, yeah.
14: हाँ हम देखेंगे, yeah. वही छोटा सा जुमला होता है, बट लेकिन हम देखेंगे, एक कह देना वो बच्चे को इतना इम्प्रेस नहीं करता, नहीं कर सकता.
15: हाँ,
14: लेकिन जब आप बैठ के वो बच्चा आपसे कहते हैं मुझे ये चाहिए, फिर आप उसको उसके पोज एंड कॉन्स एंड अच्छा या बुरा या जो भी आप कह लें आप उसको समझाते हैं, तो ही अंडरस्टैंड्स मोर. क्योंकि आप फुल अटेंशन से उसकी बात सुन रहे हैं, फुल अटेंशन से उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो डिनर टाइम है उस पे कम्युनिकेशन इज मोर प्रोडक्टिव देन जर्नल.
15: Yeah, and I would say that communication is not just talking, it's listening also. You, we all should be
14: presently,
15: actively listening to what other family members is saying, what are their emotions, what are their thoughts on something. Because while we are discussing something, we are always having something else going on in our mind.
14: We have two thoughts in our mind when we are discussing things. Yeah.
15: So we need to be active listeners. We need to be
14: mentally present over there.
15: Exactly. To show them that we are there for them. We are listening to them.
14: Bilkul. Because this is the thing that makes a house. जहाँ पे एवरीबडी इज कैन फील दैट इट्स ही इज बीइंग और शी इज बीइंग वैल्यूड. उसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी लिसनिंग से होती है, फिर आपकी कम्युनिकेशन से होती है. उस आजकल एक दौर है गैजेट्स का, माँ भी फोन पे है, बाप भी फोन पे है, बच्चे भी फोन पे हैं. तो कोशिश किया करें कि जिस वक्त आपका फैमिली टाइम होता है, मील टाइम होता है, उस वक्त आप ये गैजेट्स को साइड पे रखें.
15: नो गैजेट्स अलाउड. This rule should be for everyone.
14: Exactly.
15: Yeah.
14: No gadgets on the dining table.
15: Exactly.
14: It's the communication time. It's your family time. It's your meal time. Mm-hmm. It's your time. जिसमें आप हर चीज कर सकते. Yes, it's difficult. आजकल के teenagers के हाथ से मोबाइल लेना बिल्कुल एक जंगे आजादी की जंग लड़ना है.
15: But we have to fight this.
14: Yes.
15: Like we have to fight this war.
14: War. Exactly. It's a very big war.
15: We have to make them understand. We have to make them realize certain things.
14: Haan.
15: And we have to,
14: make a rule.
15: Exactly. Make a rule. Let them, have them follow it.
14: Follow it.
15: Yeah.
14: And it does not have to be like a angry thing. आपको गुस्से में चीख चिल्ला के कहने की जरूरत है मोबाइल रखो. Put this thing away. No, you make a rule and you do it yourself. Parents are the role model for their children.
15: और देखिए जब आप उस family time को interesting बना देंगे, interactive बना देंगे,
14: बिल्कुल,
15: तो वो बच्चा खुद ही वापस आ जाएगा.
14: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. जब आप बच्चे को value देना शुरू करेंगे, उसकी बात को सुनना शुरू करेंगे, उसको समझना शुरू करेंगे, तो वो इन चीजों को खुद ही छोड़ना शुरू कर देगा. उसको पता होगा कि ये टाइम है जहाँ पे मैं अपनी बात कर सकता हूँ
15: और मेरी मुझे कोई जज भी नहीं करेगा.
14: मुझे कोई जज भी नहीं करेगा. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. क्योंकि यूजुअली हम लोगों को, हम बहुत जजमेंटल हैं. बच्चा बात करता है तो हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं. अच्छे से ये कहा है तो ये जरूर ऐसा कर रहा होगा.
15: दैट इज द रीजन दैट दे आर ऑलवेज गोइंग बैक टू देयर फ्रेंड्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज देयर फ्रेंड्स आर नॉट जजिंग देम एंड वी आर द वंस हु आर जजिंग देम ऑल द टाइम. अपने बच्चों को जज ना करें. नॉट ऑल द टाइम.
14: बिल्कुल.
15: और कीप योर जजमेंट्स टू योर सेल्फ, टू योर पार्टनर. आपस में डिस्कस करें कि वट एवर द थिंग इज गोइंग ऑन. डोंट जज योर चिल्ड्रन ऑन देयर फेसेस एंड डोंट स्नप देम राइट अवे.
14: लिसन. बिल्कुल बिल्कुल. बाज़ोकात बच्चा कहना कुछ चाह रहा होता है लेकिन कम्युनिकेशन के लैक की वजह से हम उसकी चीज को या उसकी बात को हम समझ नहीं सकते. हम अपनी एक जजमेंट बना लेते हैं कि अच्छा इसने ये कहा है तो ये जरूर ऐसा कर रहा होगा. It's not possible.
15: So assumptions is another void in the whole communication aspect of the family, that it creates a void and something negative can easily fill it in.
14: हाँ बिल्कुल. वो तो आप किसी भी रिश्ते में देख लो, अगर आपने पहले से ही अंदाजे लगाने शुरू कर दिए, assumptions कर दिए, तो आपका अपना रिश्ता भी खराब होता है. अब मैं कहूँ कि हाजरा तुम कल नहीं आई थी तो उसके बाद इसका मतलब है कि तुमने मुझसे झूठ बोला. नहीं, ये मेरी assumption है. Maybe you are busy with something. तुमने मुझे कहा कि मैं फोन करूंगी लेकिन तुमने फोन नहीं किया, तो मैं अब ये कहूँ कि नहीं भाई इसने फोन नहीं किया, ये जरूर कुछ और कर रही है, इसे मुझे बताया नहीं.
15: तो वी बोथ ऑफ अस आर डूइंग अ मिस्टेक ऑन आवर पार्ट. लाइक आई एम लीविंग दैट कम्युनिकेशन वॉइड दैट यू आर फिलिंग इन विद योर अजम्पशन.
14: एग्जैक्टली. और ये वो चीज है जो कि अच्छी भली फैमिलीज को बर्बाद कर देती है.
15: बिल्कुल बिल्कुल करती है. नो डाउट.
14: इसमें क्या होता है, अब अगर एक घर है, एक है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपकी इतनी ज्यादा अभी फ्रेंकनेस नहीं है कि आप हर एक से सब कुछ पूछें, तो जो छोटे छोटे जुमले होते हैं, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ, हाउ आर यू फीलिंग, यू ओके, दीज आर जस्ट स्मॉल वर्ड्स.
15: And it's like Afshan just said, that communication is not only talking, not only listening. It is apologizing. It is forgiving, checking in sometimes, asking how are you feeling today, telling them that you are there for them. So communication is verbal. Communication is not verbal. Communication is tangible. Communication is intangible. So, लेकिन कैसे? अभी आप हमारे साथ रहे, हम आपको बताते हैं. And secondly, as we have mentioned it earlier, that this show is for everyone out there, irrespective of your religion, your caste, your the language you speak. Just message us on 07779-481822 to let us know how do you feel and how do you communicate in your family.
14: बिल्कुल सही है. अच्छा, अब जब हम कम्युनिकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम न्यूक्लियर फैमिली की भी बात कर रहे हैं कि सब बैठते हैं, डिनर टाइम है, तो ये जो कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट है, ये हर फैमिली को डिफरेंटली इफेक्ट करता है.
15: एग्जैक्टली.
14: ठीक है, अगर एक माँ बाप बच्चे बैठे हैं और वो बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें एक फैमिली इन्वॉल्व है. एक सिंगल पेरेंट है, तो आपके क्या ख्याल में ये कम्युनिकेशन का जो फेज है, एक सिंगल पेरेंट के लिए ज्यादा टफ होता है या एक न्यूक्लियर फैमिली के लिए टफ होता है या एक एक्सटेंडेड फैमिली के लिए टफ होता है?
15: अफशा, आपने मुझसे एक ही वक्त में तीन सवाल पूछ लिए.
14: हाँ, क्योंकि वही बात आपकी वाली बात कि ये जो एक कम्युनिकेशन का टॉपिक है ये बहुत बड़ा है.
15: एग्जैक्टली.
14: और ये हर फैमिली को डिफरेंटली अफेक्ट भी करता है.
15: बिल्कुल.
14: एक तरह से ये सबके लिए एक बॉन्ड भी है. ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये सबके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है. आपका क्या ख्याल है?
15: देखिए, कम्युनिकेशन हर फैमिली अपने फैमिली में कैसे कम्युनिकेट करती है विद इन फैमिली मेंबर्स, इट इज डिफरेंट फ्रॉम फैमिली टू फैमिली. ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, आपकी लव लैंग्वेज वुड बी डिफरेंट फ्रॉम माय लव लैंग्वेज. आपकी लव लैंग्वेज माइट बी फूड, माइट बी सम गिफ्ट, माय लव लैंग्वेज वुड बी सम केयर और समथिंग लाइक दैट, और गोइंग आउट विद द फैमिली. तो ये आप इसी से अंदाजा लगा लें कि बेसिक से ही आपकी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन कितनी डिफरेंट होती है. ठीक है, किसी का फैमिली टाइम जो है वो डिनर टेबल होता है. सम पीपल ट्राई टूगेदर आफ्टर डिनर sometimes. ठीक है, वो फैमिली टाइम उसको कंसिडर करते हैं. सम टेक देयर ब्रेकफास्ट टुगेदर, उसको वो फैमिली टाइम कंसिडर करते हैं. इट वेरीज फ्रॉम फैमिली टू फैमिली.
14: बिल्कुल सही कहा. हर फैमिली का एक अपना सेटअप होता है जो वो बनाती है जब वो कम्युनिकेशन करती है. तो इसी कम्युनिकेशन के चक्कर में कभी कम्युनिकेशन हो जाती है, कभी झगड़ा हो जाता है.
15: बिल्कुल. लेकिन एक अगर आप की को ले लें, एक द की ऑफ द कम्युनिकेशन आई वुड से, कि जैसे हमने कहा कि ये प्रोग्राम सबके लिए है, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप किसी भी फेथ से ताल्लुक रखते हैं. आई वुड कोट द सुन्ना ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कि ही वुड लिसन बिफोर स्पीकिंग, ही स्माइल्ड ऑफन एंड ही नेवर ह्यूमिलिएटेड पीपल पब्लिकली, ही करेक्टेड विद काइंडनेस. सो देयर इज सो मच वी कैन लर्न फ्रॉम हिज सुन्ना, के माशाल्लाह से इतनी अच्छी चीजें हमें बता दी गई हैं कि इफ यू जस्ट फॉलो इट, तो हमारा घर का एक एनवायरनमेंट ही डिफरेंट हो जाएगा.
14: बिल्कुल. और उसमें आता है प्यार, मोहब्बत, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग. इट्स आल्सो कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम पार्ट है लिसनिंग. जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे क्या, और समझेंगे भी कैसे समझेंगे. आप सिर्फ वो तो नहीं कर सकते ना कि अगला मुंह पकड़ के बैठे रहे, अगला बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है, देयर इज नो रिप्लाई, नो एक्सप्रेशंस, नथिंग. तो ये तो कम्युनिकेशन ना हुई.
15: Exactly.
14: क्योंकि अगला बंदा आपसे रिस्पॉन्स मांगता है उसका. और कभी कभी एक हादसा एक बड़ी डिफरेंट चीज होती है. समटाइम्स बींग देयर, बींग लिसनिंग एंड जस्ट सेइंग वन वर्ड, Everything's going to be okay.
15: It makes a huge difference.
14: बहुत बड़ी difference हो जाती है. बाज़ औक़ात आपको सिर्फ एक जुमले की जरूरत होती है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा.
15: बिल्कुल. क्योंकि देखिए, कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो एज वेल. ठीक है, आप किस मसले पे बात कर रहे हैं, आप किस माहौल में बात कर रहे हैं. आर यू सिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस इफ यू आर टॉकिंग विद योर फैमिली मेंबर, इफ यू आर सिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस योर वॉइस शुड बी रीजनेबली लो एंड यू शुडंट बी यू नो लाउड इनफ टू कैच एवरीवन्स अटेंशन. और आपको ये भी देखना है कि अगला किस टॉपिक पे बात कर रहा है. यू डोंट हैव टू डिविएट, क्योंकि इफ समबडी इज शेयरिंग देयर प्रॉब्लम विद यू, डोंट डिस्ट्रैक्ट देम और डिविएट फ्रॉम देयर, अदरवाइज दे आर गोइंग टू थिंक दैट इट्स माय प्रॉब्लम इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ इन देयर आईज.
16: हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, जब भी कोई भी बात करे आप उसको पूरी तवज्जो से सुने, उसको समझें, उसको उसके मुताबिक रिप्लाई करें. और दूसरी बात यह कि जरूरी नहीं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए आपको एग्रेसिव होना पड़े,
15: नॉट एट ऑल,
16: आर्ग्यूमेंट्स करने पड़े. आप बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश
15: कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है, जब भी हम बात करें वी शुडंट बी डिस्ग्रेसिंग एनीवन, वी शुडंट बी टॉकिंग इन अ वेरी हार्श टोन, क्योंकि हमारी लैंग्वेज की टोन ही अगले को सैड करने के लिए या उसको
16: जज करने के लिए, उसके लिए उसको इंसल्ट करने के लिए काफी होती है. बेसिकली देयर इज अ वेरी वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, आर्ग्यूमेंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये सारी चीजें हैंड टू हैंड चलती है, तो देयर इज अ वेरी वेरी थिन लाइन. अक्सर पेरेंट्स बड़े खुश होके कहते हैं कि जी हमारा बच्चा बड़ा हाजिर जवाब है. वो ये भूल जाते हैं कि वो जो हाजिर जवाब बच्चा है वो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के दरमियान जो एक थिन लाइन है वो क्रॉस कर चुका है. हाजिर जवाब होना इज अ गुड थिंग, लेकिन हाजिर जवाब होने के साथ साथ बीइंग अवेयर ऑफ द रिस्पेक्ट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट.
15: तो अफशान देखें, वही बात वापस हमारी पहली एपिसोड पे चली जाती है जब हमने ये चीज डिस्कस की थी दैट फैमिलीज आर द फर्स्ट स्कूल्स दैट द चाइल्ड गोज टू.
16: बिल्कुल.
15: तो द पेरेंट्स हाउ दे कम्युनिकेट टू ईच अदर, हाउ द पेरेंट्स आर कम्युनिकेटिंग टू देयर पेरेंट्स, द चाइल्ड इज अब्सॉर्बिंग एवरी इंच ऑफ दैट.
16: बिल्कुल,
15: सेकेंड ऑफ दैट.
16: और दूसरी बात ये कि ये आपस में हस्बैंड एंड वाइफ का भी एक बिहेवियर होता है. अगर वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो बच्चे नेचुरली वो रिस्पेक्ट देख कर सीख कर बड़े होते हैं. जिन आप खुद अंदाजा लगा ले, जिन घरों में एनवायरमेंट बहुत सॉफ्ट होती है, सबकी लैंग्वेज सबकी टोन सॉफ्ट होती है, एक रिस्पेक्ट का एरिया होता है, वहां के बच्चे नेचुरली बड़े नोबल, बड़े हम्बल, बड़े रिस्पेक्टफुल बड़े होते हैं. और जब वो थोड़े थोड़े उस पर जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो वो हर चीज को उसी तरह लेकर चलते हैं. तो ऐसा है नाज़रीन कि अब हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हम कम्युनिकेशन को लेके आगे फर्दा चलेंगे. सी यू आफ्टर द ब्रेक.
3: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक. कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर एफएम. इंस्पायर एफएम. इंस्पायर 105.1 एफएम.
17: डिड यू नो स्लॉथ्स कैन टेक अप टू अ होल मंथ टू फुली डाइजेस्ट अ सिंगल लीफ.
18: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
19: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
20: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury, and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 015 82 732 503.
4: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series,

0: the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
1: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
3: Welcome back after the break to our brand new show that is Family Matters. We are discussing communication today, and a warm welcome to those who have just tuned into your favorite radio channel, that is Inspire FM 105.1. Our hotline is 0777-9481-822. We are talking about communication within families. We are going to explore more aspects that confuse us every day.
4: अच्छा अभी हम बात करें कम्युनिकेशन पे. हमने ये डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, उसके एस्पेक्ट्स क्या है. हमने ये भी देख लिया कि कम्युनिकेशन में अगर बात करना अहम है तो सुनना भी अहम है. कम्युनिकेशन ऑल्सो कम्स विद लाइक लिसनिंग एंड टॉकिंग एंड ऑल्सो क्लियरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू. अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना है आपने, और उसके भी तरीके होते हैं रिस्पेक्टफुल तरीके से. आराम आप क्या समझती हैं कि वो कौन सी मेजर बात है, या बाज़ों का देखिए हमारी कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, तो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे जो कम्युनिकेशन है वो हम कर नहीं पाते हैं?
3: ओके, जैसे आपने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड ट्रूली लिसनिंग, जिसपे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे. आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें, हु स्पीक्स द मोस्ट और हु लिसन्स द मोस्ट, ठीक है. जो गुड स्पीकर है वो किस तरह से बात करते हैं, जो गुड लिसनर है उनकी क्या क्वालिटीज हैं लिसन करने की, एंड हु परहैप्स हैजंट बीन हर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान भी होगा जो इतने अरसे से उसने कभी कोई बात ही नहीं की होगी, या किसी ने उसकी बात आराम से बैठकर सुनी ही नहीं होगी. तो आपको अपनी फैमिली में ही बहुत सारे गैप्स नजर आ जाएंगे, बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन नजर आ जाएगी अनफॉर्चुनेटली. जैसे आई वुड से दैट समटाइम्स आवर मदर्स, ओके, वी डोंट सिट विद देम एंड आस्क देम व्हाट इज ट्रूली बॉदरिंग यू, और यू हैवंट आस्क्ड फॉर समथिंग इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. डू यू नीड एनीथिंग? डू यू वॉन्ट मी टू टेक यू टू अ डे ट्रिप और समथिंग लाइक दैट? हैव वी? नो, वी डोंट. हम वी आर just busy in our own lives, our livelihood and our children, कि हम अपने parents को या especially हम अपनी mothers को जो है वो neglect कर देते हैं.
4: असल में वो एक concept आ जाता है कि हमारे parents जो है वो बहुत strong है, ठीक है, या हमारे जहन में ये चीज आ जाती है कि यार हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, अम्मी को सब पता है, अम्मी को पता है कि हम बिजी हैं, अम्मी को हाँ वो मैनेज कर लेंगी, उसको पता है हम बिजी हैं, तो खैर कोई बात नहीं, शी विल मैनेज. मेरे ख्याल में आपने बहुत जबरदस्त बात की हाजरा, कि हमें कभी कभी अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना चाहिए, उनके साथ बैठ कर भी बातचीत करनी चाहिए. अच्छा, हम अक्सर अपने पेरेंट्स को फोन करते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि हम बोलते ज्यादा हैं, वो सुनते ज्यादा है. हम उनको अपनी हर बात बता रहे होते हैं, अम्मी से चीजें शेयर कर रहे होते हैं, अम्मी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने कभी उनसे नहीं पूछा कि अम्मी हाउ आर यू फीलिंग.
3: एंड दिस इज द थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड रिसेंटली, कि वी आर जस्ट टॉकिंग, वी आर जस्ट बिजी इन आवर ओन लाइव्स. And especially the people like us who are immigrants from other countries like
4: Pakistan, Bangladesh,
3: Sri Lanka, anywhere, Africa,
4: around the world,
3: if you are coming from your own country where you have left your loved ones, your family, your parents, your siblings who are not around you here in this foreign country,

0: you miss them. And because of all the juggling that you are doing with your job and house and things like that, you forget to call them.
1: And you forget to talk to them.
2: Okay. तो अपने पेरेंट्स को भी टाइम देना बहुत जरूरी है. और इस हसल बसल में से साइंटिस्ट प्रूव कि व्हेन यू टॉक फॉर 10 मिनट्स टू विद योर मदर ऑन द फोन, योर ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स, योर बॉडी स्टार्ट्स टू फील रिलैक्स. आपकी माँ की आवाज या जो उनकी प्रेजेंस है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आप हाँ बिल्कुल और आपके आपको एकदम से रिलैक्स कर देती है.
0: एंड सी इट्स अ विन-विन सिचुएशन के यू आर टॉकिंग टू योर मदर आस्किंग देम हाउ डज शी फील एंड यू योरसेल्फ आर हैविंग दैट सप्लीमेंट.
2: हाँ बिल्कुल उसके आपके जो है तो रिलैक्सेशन
0: एग्जैक्टली सूदनेस इन योर बॉडी.
2: बिल्कुल ये तो है. तो जब हम इसी तरह की बात करते हैं तो आपको अभी हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन पे और कम्युनिकेशन के ब्रेकडाउन पे, ठीक है ना, कि ये टूटती कैसे है, इसमें गैप कैसे आते हैं, इसको हम या आजकल के जमाने में जो इसका मेन रीजन है वो गैजेट है. माँ भी फोन पे है, बाप भी फोन पे है, हर कोई है, तो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए टाइम नहीं है.
0: तो अफशा, हमने इस वाई फैमिली कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन इसकी बहुत सारे रीजंस तो हमने पहले ही बातों में डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि नोबडी इज लिसनिंग
2: एग्जैक्टली, कोई भी नहीं लिसन कर
0: रहा, एवरीबॉडी इज प्रिपेयरिंग देयर नेक्स्ट मूव और देयर आंसर टू दैट कन्वर्सेशन दैट इज गोइंग ऑन, दे आर नॉट एक्चुअली लिसनिंग टू यू.
2: हाँ, दूसरी बात ये कि जो आजकल पहले जमाने में ये तो होता था कि चले बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों ने जो बात कर दी, जो एल्डर्स हैं वो करते हैं, वो समझाते हैं, पीपल वुड लिसन, बच्चे सुन लेते थे, बिकॉज देयर वाज नो मीडिया, देयर वाज नो सो मच, वो कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन ऑन द नेट. तो जो हमारे बड़े बताते थे हम उसको सुनते थे, हम उसको आगे लेके चलते थे.
1: That was the only activity we used to have.
2: बातचीत कर ली, लेकिन आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि आपके फ्रेंड्स होते थे.
0: यू वर देयर टू कम्युनिकेट मोर, कनेक्ट मोर विद योर कजन्स, विद योर फैमिली मेंबर्स.
2: हाँ,
0: आपका बॉन्ड बड़ा अच्छा हो जाता था.
2: वो सोशलाइजिंग जो थी ना, वो आपका कैथारसिस भी थी. बच्चे जो थे तो वो गली में क्रिकेट खेलते थे, दोस्तों की तरफ जाते थे, तो उनके जो फ्रस्ट्रेशन होती थी या उनके जो थॉट्स होते थे या उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो डिस्कशन में हल हो जाती थी.
0: Exactly.
2: अक्सर बच्चे अपने किसी ना किसी घर के मेंबर के क्लोज होते थे. अगर आप मेरी बात करें तो मैं अपनी खालाओं से क्लोज थी, तो यू नो दे वर ऑलवेज देयर, यू नो, जब मेरी को बात होती थी, मेरी प्रॉब्लम होती थी. अब जो मेरे बच्चे हैं वो कुछ क्लोज ही नहीं होते किसी से, मतलब उनको कहो तो कहते क्यों, दिस इज आवर पर्सनल लाइफ, दिस इज माई लाइफ.
1: एंड प्राइमरीली दे हैव ऑलवेज लिव्ड इन अ न्यूक्लियर सिस्टम एंड देयर फैमिली वाजंट अराउंड. आपके कुछ फैमिली जो है किसी और कंट्री में है, कुछ फैमिली इज बैक इन पाकिस्तान, एंड यू आर kind of all alone with your children here.
2: बिल्कुल, तो फिर इस सूरत में हमारी कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उनके पीछे सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया. उनके पीछे वो सिस्टम खत्म हो गया है जिसमें वो अपनी बात किसी को बता सकें, अपनी बात किसी के साथ शेयर कर सके. कजन्स नहीं है, कोई ऐसा अंकल आंटी नहीं है जिसके साथ वो बात कर सके. सो वी आर द ओनली वन दे हैव गॉट फॉर देयर डिस्कशंस.
0: एग्जैक्टली, और कम्युनिकेशन के लिए आपका एक जो पॉइंट मैं समझती हूँ कि आपका फेस टू फेस होना, एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ मे बी शेयरिंग सम फूड एंड थिंग्स लाइक दैट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Eye contact is really important. Aapka phone pe communication, if you haven't seen each other, if you haven't felt the presence of each other, to phone pe communication adhura reh jata.
2: Bilkul, isiliye hamare bade aaj bhi kehte hain ki jab koi important baat hoti hai to wo kehte hain ki nahi aao baitho phir baat karenge.
1: Aa jana zara khane ke baad.
2: Aa zara baitho baat karte hain. Bilkul sahi
1: kaha. That was kind of warning as well ki zara aa jao tumse baat karni hai.
2: Ha, ye ek bada buzurgon ka ek typical jumla hota hai, zara aao na ghar baith ke baat karte hain. To we know that there is something wrong, we did something wrong or something happened. लेकिन दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आप बैठ के बात करते हैं आई टू आई, फेस टू फेस, तो उसमें आप ज्यादा, मेरे ख्याल में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है वो बात.
1: एग्जैक्टली, इट इज
2: क्योंकि हवा पे तो बात नहीं हो रही ना.
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप एक दूसरे की प्रेजेंस को फील करते हैं, आप उसके इमोशंस देख सकते हैं. देखें आजकल रिलेशनशिप्स हाउ डू दे गो बैड, कि आप टेक्स्ट कर रहे हैं, द टेक्स्ट इज नॉट शोइंग योर एक्चुअल इमोशंस, ठीक है.
2: हाँ, तो वो गलतफहमियां ज्यादा होती हैं,
0: वो असम्पशंस और मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, दैट इज ग्रोइंग विद एवरी टेक्स्ट यू आर सेंडिंग.
2: आजकल तो इजिप्शियन दौर चल रहा है, इमोजीज, एक ठक करके इमोजी भेज दी, ठीक है। मुझे तो लगता है हम दोबारा वो जो है ना वो फेरोस के टाइम में जा रहे हैं, जहां पे उनके वो बर्ड्स बने होते थे, ह्यूमंस बने होते थे, काउस बने होते थे। आजकल के आप इमोजीज देख लें और आजकल के बच्चे को भी देख लें,
1: इमोजी
2: भेज देते हैं।
0: इमोजीज आर नॉट communicating the whole essence of the thing.
2: Exactly.
0: Okay. Haan. And how can I haven't thought of sending a thumbs up emoji or a smiley emoji to my father. I would never do that. Exactly. Like one thing that there is an element of respect. Second, I am afraid of doing so. Exactly. I can't do it.
2: सही बात है। और हमारे बच्चे ठक, उसको कोई चीज भेजो, कोई क्वेश्चन भेजो, कोई आंसर भेजो, वो ठक करके एक इमोजी भेज देते हैं। अब बंदा उस इमोजी को लेके सोचता ही रहता है कि इसका ये यस है, ये नो है, ये मे बी है, ये क्या है, ठीक है। तो हम तो वाकई फेरों के टाइम में जा रहे हैं, ठीक है। और हमसे आगे वाली आने वाली नस्लें, तो मुझे लगता है वो तो सारा ना वो डिजिटल हो जाएगा सब कुछ, जिसमें इमोशंस खत्म हो जाएंगे। सो मेरे ख्याल में ये वक्त है, दिस इज द टाइम दैट वी शुड स्टार्ट
0: reviving all the old traditions of the family, bring them back, start practicing them.
2: क्यों बच्चे तन्हा होते जा रहे हैं, they are more getting into these digital worlds than the real world.
1: Exactly.
2: आजकल के बच्चे अच्छा, और इसका सबसे बुरा impact क्या हो रहा है, temperaments, behavior,
0: attention, loss of attention, the focus issues.
2: Behavior issues.
0: Yeah, the reason we have, unfortunately, we are having more children on spectrum.
2: बिल्कुल.
0: Because everything is contributing.
2: आजकल की टाइम ऐसा आ गया है कि आई नो दिस लाइफ इज बिकम सो मच हार्ड, स्ट्रगलिंग लाइफ आ गई है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आजकल के जो हालात है दुनिया के देख ले उसके उसके बहुत मुश्किल हो गया है एक फैमिली को इकट्ठा रखना। यानी वो टाइम जिसमें ये गैजेट्स नहीं थे, ये डिजिटल वर्ल्ड नहीं थी, उसमें फिर भी बेहतर होता था, लेकिन आजकल की एक जो इन्वायरमेंट बन गई है जिसमें सिर्फ मुकाबला चल रहा है, गैजेट्स का मुकाबला चल रहा है, जिसमें मुख्तलिफ चीजों का, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मुकाबला चल रहा है, और अच्छी लाइफ, इवन की बेसिक अच्छी लाइफ देने के लिए भी पेरेंट्स को बहुत ज्यादा,
0: वी आर स्ट्राइविंग सीरियसली इन आवर टाइम्स। यू वुड रिमेंबर अफशां कि अगर हमें एक नया पेंसिल बॉक्स ही मिल जाता था, वी वुड द हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ।
2: बिल्कुल, पूरी क्लास में दिखा के हर लड़की को, हर फ्रेंड को कि देखो हमें ये मिला है, इट वॉज अ वेरी वेरी बिग थिंग।
0: आई थिंक everyone out there is going to relate it, chahe wo duniya ke kisi bhi part se unka connection hai, they are going to relate this thing. Even a new pair of shoes would
2: be something
0: for us. Yes, exactly.
2: Isme koi shak nahi hai,
0: we would flaunt that in front of our friends and family members.
2: Hum dikhate the, hum batate the, hum discuss karte the, hum communicate karte the, ek khushi hoti thi, बहुत बड़ी खुशी होती थी। आजकल के बच्चों को ये सब चीजें मिलती हैं।
0: Also the use of Eid cards.
2: Oh, zabardast.
0: Yeah, the cards that you send to someone.
2: खुद से लिखना, वो शेर लगाना, वो उसके ऊपर छोटे छोटे फूल लगाना,
0: exactly.
2: क्राफ्ट करना,
0: तो सबसे पहले उनको जाके खरीद के आना। माई फ्रेंड एंड आई वुड स्पेंड सम टाइम, वी वुड एलोकेट अ बजट आउट ऑफ आवर पॉकेट मनी, गो टू द मार्केट, do the selection and bring back all those cards, aur phir hum decide karte the ki acha ye tum apni friend ko bhej rahi ho, I'm going to send this to my friend and things like that.
2: I would
0: send that across like to other cities as well, like if some cousin or some friend is sitting living in another city, I would post the card as well.
2: Ha, to wo ek fun hota tha na jisme hum likhte the. Aajkal ke bachchon ko to likhna bhool gaya. I'm just amazed. I met a 8-year-old child, and because everything is on digital now, laptop hai aur phone hai aur uska homework bhi hota hai, and usko jab likhne ka kaha to he really got offended. Na usne kaha kyun ki aajkal kaun likhta hai, aajkal to sare ke sari cheeze jo hai to online hoti hain.
0: I think we have to bring these things back.
2: So he was like quite upset ki why would I need to write down something, a simple sentence. These things are destroying. I think this is a great invention, but it's also lacking the main thing of being family together.
0: So they are starting the its consequences are starting from the individual family, mm-hmm. going to extended family and going to the environment, the nature itself. जितने भी consequences हैं.
2: एक मुझे किस्सा याद आया कि एक दफा एक कोई बुजुर्ग थे वो बात कर रहे थे कुछ समझा रहे थे तो उन बुजुर्ग के साथ उनका अपना बेटा भी बैठा हुआ था और कुछ लोग भी बैठे हुए थे जिनसे वो बुजुर्ग बात कर रहे थे तो जब उन्होंने एक बात की तो उसके बाद वो महफिल खत्म हो गई तो जब वो उठे तो उनके बेटे ने कहा कि अब्बा जान आपने ये वाली जो बात की थी ये ऐसे नहीं ऐसे है आपने गलत बयान की तो उन्होंने कहा बेटा तुमने ये बात मुझे उसके दरमियान में क्यों नहीं बताई जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो बेटा बोला कि अगर मैं उस वक्त बताता तो आप लोग आपके इल्म पे शक करते आपकी इंसल्ट हो जाती तो मैं इसलिए रुक गया तो जब आप अगला दर्स देंगे तब इस बात को ऐसे बयान कीजिएगा जैसा कि हमने सुना है ये जो किताबों में है ये जो हदीस में है बात आती है कम्युनिकेशन की और बात आती है रिस्पेक्ट की ठीक है आजकल के बच्चे आप उनसे कहें कि ये फलां ब्रिज इस जगह पे है वो विद इन सेकेंड्स 10 लोगों में बैठ के गूगल करेंगे आपको कहेंगे यू आर रॉन्ग मॉम डैड दिस इज नॉट लाइक दिस दिस इज लाइक दैट
0: या एग्जैक्टली और जिस जहां से आपने अपनी बात स्टार्ट की थी अफशा आजकल की जनरेशन के बारे में और तो एक बहुत ब्यूटिफुल देयर इज एन अफ्रीकन प्रोवर्ब द चाइल्ड हु इज नॉट एम्ब्रेस्ड बाय द विलेज विल बर्न इट डाउन टू फील इट्स वॉर्म्थ कि जिस बच्चे को आप अटेंशन नहीं दे रहे इन इट्स लिटरल मीनिंग जिसको आप अटेंशन नहीं दे रहे जो अपनी बात सुना नहीं पा रहा तो ही इज गोइंग टू बर्न डाउन द होल विलेज
2: जाहिर बात है जब उसको अटेंशन नहीं मिलेगी जब उसको कोई बात नहीं सुनेगा और यही मेन प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों के डिप्रेशन का माँ बिजी है बाप बिजी है दोनों फुल टाइम वर्क कर रहे हैं घर आते हैं बच्चे बैठते हैं कहते हैं अब्बू मेरा फॉर्म फिल करना है अब्बू मुझे ये चीज चाहिए अब्बू मुझे ये प्रॉब्लम है माँ बाप और उसके बाद वो उसको मदद चाहिए भी होता है तो वो बाहर मदद ढूंढता है वो घर से बाहर लोगों से मदद ढूंढता है और जरूरी नहीं कि बाहर जो उसको मदद दे रहा है वो कोई अच्छा इंसान हो
0: एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू से कि सपोर्ट योर चिल्ड्रन बिफोर दैट दे आस्क somebody else
2: supporting support
0: and that is not what you would want them to have
2: bilkul kisi bhi family ki buniyad communication hai agar hum log ek dinner time ko communication time bana le aur din bhar ki tamam baatein sune samjhe कम्युनिकेट करें प्रॉब्लम्स को हल करें उनका अगर कोई उनको कोई चीज चाहिए उसको उस वक्त सॉर्ट आउट करें उनको कोई फॉर्म फिल करना है उस वक्त कोई सॉर्ट आउट करें अगर ये वो डिनर टाइम जो कि अगर आप एक घंटा सारे दिन में से उस डिनर टाइम को लगा लें हर मसले तो मेरे ख्याल में आपके बच्चों को घर से बाहर जाकर किसी से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी
0: इवेंचुअली यू विल फील दैट 1 hour और 45 मिनट्स दैट इज द गोल्डन टाइम ऑफ योर होल डे
2: और दिस इज गोना गो ऑन क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे दे विल बी यूज्ड टू अ पैटर्न कि हमने इस वक्त बैठना है हमारे अम्मी अब्बू इस वक्त हमारी बात सुनते हैं हमसे बात करते हैं हमारे और ये चीज वो आगे एक एक्सटेंडेड फैमिली बहुएं आती हैं घर में एक नई लाइफ शुरू होती है एक नया सिस्टम शुरू होता है एक नया सेटअप शुरू होता है तो आप अपने बच्चे को उसको सिखा रहे हैं कि वो अपने आने वाली जनरेशन के साथ कैसे अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कर सकता है कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है
0: बिकॉज फॉर चिल्ड्रन लव इजंट स्पेल्ड एज एल ओ वी ई इट इज ऑलवेज स्पेल्ड एट टी आई एम ई टाइम फॉर चिल्ड्रन लव इज टाइम दैट यू स्पेंड ऑन देम
2: तो कम्युनिकेशन टाइम भी आ गया आपने बच्चों को टाइम भी दिया आप उसको वो दे रहे हैं आप उसके साथ टाइम लगा रहे हैं आप उसके साथ बात कर रहे हैं आप उसके साथ उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं अच्छा दूसरी बात एक और हम अगर इन सारी चीजों को देखें कम्युनिकेशन को देखें टाइम को देखें फिर उसमें ये क्या आता है उसमें आता है कि बाज़ औक़ात ठीक है कि पेरेंट्स थके हुए होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं ठीक है तो आपका क्या ख्याल है क्या हमें अपनी इरिटेशन बच्चों के सामने एक्सपोज करनी चाहिए या उनसे किसी तरीके से बात करनी चाहिए
0: नेवर. देखें, आप अगर घर से बाहर अर्न कर रहे हैं, यू आर अर्निंग अ लाइवलीहुड और उसमें आपको कोई हर्डल्स आ रहे हैं, योर चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव लव टाइम टू योर चाइल्ड. ठीक है, यू वो कहते हैं ना कि आप ऑफिस घर से बाहर छोड़ दिए हैं, ठीक है, सो दैट यू व्हेन यू एंटर योर हाउस, तो आप यू आर द इंडिविजुअल दैट द हाउस नीड्स.
2: बिल्कुल.
0: यू आर द पिलर दैट द हाउस नीड्स, योर फैमिली नीड्स. ठीक है, वेदर यू आर वुमेन ऑफ द हाउस हु इज वर्किंग और वेदर यू आर द मैन ऑफ द हाउस हु इज द ब्रेड विनर, इट इज फॉर बोथ ऑफ यू. दैट लीव योर ऑफिस आउटसाइड द हाउस, बी दैट मदर फिगर और द फादर फिगर दैट द चाइल्ड नीड्स.
2: तो एंगर वो होता है ना, मतलब कि जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठो या आप अपने फैमिली के साथ बैठो, किसी भी वक्त हो, कोई भी वक्त हो, तो उस वक्त आप सारी चीजों को जहन से निकाल कर बैठो.
0: बिल्कुल.
2: ताकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सके.
0: बिल्कुल. और आप इफ यू आर टायर्ड व्हेन यू कम होम, जस्ट एंड योर चाइल्ड इज आस्किंग फॉर समथिंग, टेल देम दैट आई एम हियर, we are going to talk after 5 minutes, just give me some time to freshen up and everything like that. They are going to understand it slowly also, and never snub them from asking, never snub them for asking your help, your support, your time, your love, because they it's their right and it's your responsibility to provide it to them.
2: बिल्कुल. इसीलिए इस्लाम में भी गुस्सा करना हराम है. और कहते हैं जब बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो पानी पी लेना चाहिए. कोई भी बात करने से पहले, कोई भी कम्युनिकेशन करने से पहले, अगर आपका गुस्सा तेज है तो आप थोड़ा सा पानी पी लिया करें. पानी बहुत, पानी में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे चीज रखी है कि वो आपका टेम्पर ठंडा कर देता है, वो आपके मिजाज को ठंडा करता है. तो अगर आप ज्यादा गुस्से वाले हैं मेरी तरह, तो पूरा एक गिलास पानी का चढ़ा के फिर बच्चों से बात किया करें, क्योंकि मुझे भी यही होता है कि जब बच्चे आते हैं ना तो टेंशन शुरू हो जाती है कि अभी कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि जिससे मुझे गुस्सा आएगा, तो पहले पानी पी लो.
0: एग्जैक्टली. 07779481822 इज द नंबर दैट यू कैन लीव योर मैसेज ऑन. वी आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्लूड ऑल योर फीडबैक एंड मैसेजेस, क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू शेयर अबाउट द ब्रांड न्यू शो Family Matters in upcoming episodes. Or moving towards the last part of the show, part one of communications, last but not the least, because we are going to have part two of the communications as well. Afsha, why family communication breaks down? We have talked about so many things, unspoken expectations.
2: बिल्कुल. होता क्या है कि जिस तरह होता है ना कि हम बच्चे को देखते हैं, हम कहते हैं यार इसके जहन में जो चल रहा है वो तो मुझे पता है. ठीक है, तो हम assumption पे होते हैं. ठीक है, ठीक है, बहुत दफा as a mothers and as a parents we have these feelings. ठीक है, we know. हमारी वो जो ममता होती है ना वो बहुत strong होती है, connected होती है बच्चों के साथ. हमें पता होता है कि बच्चा इस वक्त किस उस state में है, किस उसमें. लेकिन कभी कभी बच्चे को बोलना भी जरूरी होता है. ठीक है, हम सिर्फ assume नहीं कर सकते. ठीक है, most of the time वी आर राइट. ठीक है, इसको प्रॉब्लम है. हम बच्चे की शक्ल देखते हैं, हमें पता चलता है यार ये कुछ करके आया है, या ये परेशान है, या इसने किसी के साथ पंगा लिया है.
0: एग्जैक्टली.
2: हमें पता होता है. लेकिन समटाइम्स मे बी वी आर रॉन्ग, मे बी दे नीड टू स्पीक अप, दे नीड टू टेल अस व्हाट दे आर फीलिंग.
0: और ये दीज अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस इफ दे आर रनिंग इन योर फैमिली, दे आर इक्वली पॉइजनस. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट योर रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन. बीइंग अ पार्टनर और बीइंग अ स्पाउस, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम योर स्पाउस एंड लाइक इफ यू हैव मेड गुड फूड एंड दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग, इट डजंट टेक अ होल लॉट ऑफ मनी टू अप्रिशिएट यू. सिर्फ कह देना कि आज खाना बहुत अच्छा था, आई रियली एंजॉयड इट, गुड फूड, इट इज ऑल दैट दे आर एक्सपेक्टिंग टू लिसन, इज इट?
2: बिल्कुल, ऐसे ही होता है. कभी कभी सुबह से लेके इतने दिल से खाना बनाओ बनाओ बनाओ, मियाँ आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, उठ के चले जाते हैं, एक जुमला नहीं बोलते कि यार इतनी गर्मी थी, सुबह से लगी हुई है, चलो यार तुमने बहुत अच्छा बनाया. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं. आई नो यू हैव टू गिव योर स्पाउस अ स्पेस. ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी है कि कभी कभी कोई आपको अप्रिशिएट करे. अक्सर ये होता है कि मैंने बहुत सारी हम लोग जब बात करते हैं, हम कहते हैं हाँ यार हमें पता है उसके जहन में क्या चल रहा होगा.
0: No, this is a communication void. This is a communication gap.
2: Haan.
0: These assumptions and these unspoken expectations, when they are filled in by wrong
2: assumptions,
0: so they create a disaster then.
2: Haan. Kyun nahi? Ab Mia ko chahiye pani, main usko jaake kheer pakda dun. उसकी तो बेचारी की सारी वो खराब हो गई ना एक्सपेक्टेशंस. तो बिल्कुल सही कहा, कभी कभी हम गलत सोचते हैं, कभी कभी हमारा तज्जिया गलत होता है, हमारी जो क्या कह सकते हैं आप, हम लोग जो सोच होते हैं वैसा होता नहीं है. ठीक है, हम लोग मिसजज कर जाते हैं
0: और अपने आप को रॉन्ग डिक्लेयर करने में, अपने आप को गलत डिक्लेयर करने में, दैट आई हैव टेकन दिस रॉन्ग स्टेप या आई हैव स्पोकन दिस रॉन्ग वर्ड, हमारी कोई डू वी बिकम इन्फीरियर
2: ना. कहाँ बेबी, घर है आपकी, फैमिली है आपकी, लाइफ है, तो क्या हो गया अगर आपने सॉरी बोल दिया तो? दैट्स नॉट एन इशू.
0: आई हैव स्पोकन सॉरी टू माय चिल्ड्रन मोर देन आई हैव स्पोकन टू माय.
2: हम भी हाँ थोड़ी देर बाद
0: एग्जैक्टली,
2: हाँ हम भी करते रहते हैं, हाँ बेटा सॉरी यार गलती होगी, चलो आज ना नेक्स्ट टाइम नहीं होगा. इट्स नॉट सेइंग सॉरी, इट्स प्रोटेक्टिंग योर रिलेशनशिप.
0: एंड यू नो इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ हम्बलनेस इन एंड रिस्पेक्ट इन योर चिल्ड्रन एज वेल.
2: हाँ दे लर्न सेइंग सॉरी इज नॉट अ बिग इशू.
0: एग्जैक्टली,
2: ठीक है ना. तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा, लिसनर्स ये था आज का हमारा फैमिली मैटर्स शो. उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा. मैं अफशा इरफान और मेरे साथ हैं हाजरा खान.
0: डोंट फॉरगेट टू कम्युनिकेट ऑन आवर हॉटलाइन, दैट इज 0777948182. वील बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक. और जाते जाते डोंट forget to spend that family time that we have talked throughout the episode. Part 2 is going to come soon. See you then. Allah Hafiz. Take care.
2: Allah Hafiz.
3: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
4: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
8: Assalamu Alaikum. Calling all young brothers age 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777948182 and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.